0: विचार शक्ति जितनी ऊंची होती है व्यक्ति उतने ही ऊंचे कार्य करता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वक्ता देवी चित्रलेखा जी के विचार।
1: कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
2: नारद जी आए हैं, देवी लक्ष्मी आई है, बाबा भोलेनाथ भी आए हैं। बाबा भोलेनाथ जी पूरे परिवार के साथ आए, लेकिन अब इनको वहां जगह कौन देगा जाने के लिए? इतनी भीड़ भाड़ में कोई नहीं देखता कौन वीआईपी है कौन नहीं है, सबको ही लगता हम ही आगे बढ़े। दर्शन नहीं करने दिया। बाबा जी ने सोचा अब तो दर्शन नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, दोबारा दर्शन करने आएंगे। तो बाबा भोलेनाथ दोबारा दर्शन करने आए, कब? जब भगवान 4 दिन के थे। बड़ा अद्भुत वर्णन है, ध्यान से सुनिएगा। आज ठाकुर जी 4 दिन के हैं, 4 दिन का लाला है, बड़ा सुंदर रूप है। भोलेनाथ जी पहुंच गए, आकर के मैया के द्वार पर सबसे पहले कैलाश से निकले हैं बाबा भोलेनाथ। कैलाश से निकल ही रहे थे कि इतने में ही पार्वती जी ने आवाज दिया, अरे अजी कहाँ जा रहे हो? माताओं बहनों का ये थोड़ा सा स्वभाव होता है, जब पति देव किसी काम से बाहर निकले ना तो भले बात नहीं करेंगे, लेकिन जब निकलने ही वाले होंगे तब जरूर कहेंगे, अजी जा रहे हो, अच्छा आते टाइम 2 किलो आलू ले आना। तो चलते टाइम मैया टोकती जरूर है। तो भोलेनाथ जी बोले, कहीं नहीं, वो क्या है ना, लाला का जन्म हुआ है नंद महल, तो उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। पार्वती जी बोले, ऐसे दर्शन करने जा रहे हो? रूप देखा अपना, कोई घुसने नहीं देगा? नंद बाबा की सिक्योरिटी बड़ी टाइट रहती है, आपको मालूम है वहां कोई घुस नहीं सकता बिना आज्ञा को। ऐसे रूप से आपको कोई घुसने देगा वो तो भला हो, जो ब्याह पे आप ऐसे आए हो, मेरे माता पिता ने आपको ऐसे ही ब्याह दिया। क्योंकि भोलेनाथ जी तो भोलेनाथ जी है, ब्याह में देवताओं ने खूब काम हारा, थोड़ा आज तो थोड़ा सा ड्रेसअप चेंज कर लीजिए। जैसे कैसे कर लेंगे, किसी को अपनी छोरी देनी हो तो ऐसे ही दो जैसे हम हैं, हम किसी के लिए नहीं बदलने वाले। वही सांप सब पूरे गले में लटकाए, बोले महाराज कम से कम घोड़े पे तो बैठ जाओ, और कुछ नहीं तो कम से कम घोड़े पे बैठ जाओ। बाबा भोलेनाथ कहते, हमको घोड़े वोड़े की जरूरत नहीं, हमारा नंदी है, यही हमारा साथी और यही अंत तक साथ देगा, हम तो इसी पे बैठ के जाएंगे। नंदी पे बैठ गए, और नंदी पे भी बैठे उल्टा मुंह करके, इधर की तरफ मुंह करके, और बारात लेके जा रहे। देवताओं ने सोचा कि अजीब, ये तो शंभू हैं, इनको तो ना सम्मान से मतलब ना अपमान से, लेकिन अपमान तो हमारा होगा कि देखो देवता किसकी बारात में आए। इसलिए देवताओं ने क्या किया, बोले ये पीछे आते रहेंगे, हम सब पहले पहुंच जाते, और दूल्हा को छोड़ के ही सारी बारात आगे बढ़ गई। बाबा भोलेनाथ ने देखा ये तो छोड़ के चले गए हमको, अब हमारी बारात का क्या होगा? भोलेनाथ जी ने कहा, चिंता मत करो, हमारे पास बरातियों की कमी नहीं। उठाया डमरू और एक बार बजाया, डमरू बजाते ही दुनिया में जितने शमशान के भूत प्रेत हैं सब बाबा भोलेनाथ के सामने प्रकट हो गए। बोले कहिए महाराज, बोले कहिए नहीं, तैयार हो जाइए, बारात में चलना है। तो बोले महाराज हम तो तैयार हैं एकदम। और कैसे तैयार है, कोई है किसी का मुंह ही नहीं है, कई है किसी के 4-4 हाथ हैं, किसी के 10-10 पांव हैं, ऐसी अद्भुत बारात बाबा भोलेनाथ चल पड़ी। अब जैसे पहुंचे, बारात पहुंची हिमालय राजा के घर, तो सारी सखियां और सारी माताएं बाहर खड़ी थी आरती थाल लेके, बोले बारात आ रही है, दामाद जी आ रहे होंगे। सबसे पहले बरातियों की लाइन में चल रहे इंद्र देवता, लगा अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, कितना सुंदर दामाद मिला है, इसका रूप तो देखो। देवता बोले नहीं जी नहीं, ये दामाद जी नहीं, ये दामाद जी तो पीछे आ रहे हैं, ये तो दामाद जी के दास हैं। सखिया बोली, जब दास इतना सुंदर सौंदर्यवान है तो मालिक कितना होगा? तो बोले चिंता मत करो, आ ही रहे, देख ही लेना आप, वो भी बस पीछे ही पीछे बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर आया कामदेव, बड़े बड़े सौंदर्य को पछाड़ दे, ऐसा काम दे। फिर आरती की थाली लेके खड़ी हो गई मैना जी कि दामाद जी आगे दामे। बोले ये भी नहीं है दामाद जी, ये तो बस उनके यहाँ थोड़ा बहुत कोई झाड़ू पोछा का काम कर लेते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ। अच्छा, अब तो बस बस आ जाए दामाद जी, कैसे भी एक बार झलक देख ले कैसे दामाद जी। नारद जी ने ऐसा कौन सा अद्भुत दामाद बता दिया हमें। नारद जी ने ही विवाह का प्रस्ताव रखा था। अब देवताओं की बारात खत्म हुई और भोलेनाथ जी की बारात हुई चालू। डम डम डम डम करते करते सारे पहुंचे। बोले दामाद जी कहाँ है? बोले दामाद जी वो देखो नंदी पे उल्टे बैठे। दामाद जी से कही उतरे तो सही। दामाद जी उतरे और उतर के सासू जी के सामने आए और जैसे मैना ने देखा कुछ बोल नहीं पाई और बस आरती की थाली हाथ से छूट गई और वहीं की वहीं बेहोश हो गई। ये नारद ने क्या? अब भोलेनाथ जी झांक के देख रहे हैं, साइड वाले से पूछते हैं माता जी कौन है? अरे माता जी नहीं, आपकी सासू जी है। बाबा बोले सासू कौन सा पदार्थ होता है? ले बाबा पूछो मत, बड़ा अद्भुत पदार्थ होता, आपको इन्हीं से लेना देना है, आगे यही अपनी छोरी देंगे। अपने ब्याह में ये नहीं बदले। पार्वती जी कह रही हैं आज जब मिलने जा रहे हो ठाकुर जी से तो आज तो कम से कम अपना रूप बदलो। बाबा को लगा कि बात तो ठीक कह रही है पार्वती, क्या पता कोई घुसने दे नहीं घुसने दे। बाबा ने तुरंत कपड़े बदले, धोती पहनी, पगड़ी बांधी, गले में मोतियों की माला पहनी। चलने ही वाले थे कि तभी अपने गले से नाग उतार रहे थे, तभी एक नाग फुसफुसा के हाथ जोड़ करके कहता बाबा जी एक प्रार्थना है, कहूं अगर आपकी आज्ञा हो तो। बाबा जी बोले हाँ बिल्कुल कहिए, क्यों नहीं। ए बाबा जी छोटी मुंह बड़ी बात है, लेकिन देखो हमने एक बात सुनी है संतों के मुख से कि जब भगवान के सामने जाओ ना भगवान का दर्शन करने तो दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसे आप हो वैसे ही जाना चाहिए, और हो कुछ और बन के कुछ और जाओगे तुम्हारा उससे तो कोई लाभ नहीं है। बाबा भोलेनाथ बोले वाह मेरे बेटे, ये तू ही मेरा सच्चा साथी और मैं तुझे ही छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे कैसे जा सकता हूँ। बोले बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो पार्वती की बातों में फंस गया, तुरंत अपने वो कपड़े उतारे और वही भस्म लगा के मुंडों की माला पहनकर बाबा एकदम तैयार, अब तो यही रूप में जाएंगे, दर्शन करा दे तो करा दे, नहीं कराए तो वो जाने। और लेके अपना त्रिशूल बाबा भोलेनाथ आ गए मैया के घर और आकर के जोर जोर से आवाज लगाई अलख निरंजन अलख निरंजन, अरियो मैया दरवाजा खोल दरवाजा खोल। मैया को लगा कोई द्वार पर साधु आए, गोपी को कहा दासी को कारी जरा जइयो देखियो कौन बाबा जी आयो द्वार पे। गोपी दौड़ के गई जाके देखा, बोला मैया एक ऐसो बाबा जी आयो ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी देखियो होगो मैया तेने ना कभी देखेगी। ऐसो कौन सो बाबा जी आगो? बोले मैया तू ही चली जा। मैया बड़े भाव से गई द्वार पर, संत आए घर में तो इससे बड़ा क्या हो सकता। मैया पहुंच गई और जैसे मैया बाहर गई बाबा का दर्शन किया, बस मैया खड़ी खड़ी कांप रही है। बोले बाबा जी कहां थे पधारे हो? बोले मैया बड़ी दूर से आए हैं, हिमालय की गुफा में थे आए। अच्छा बाबा जी कहां लोगे, भोजन पाओगे कि सोना लोगे कि चांदी लोगे, कहां लोगे? बोले अरे मैया तो को हमारे स्वरूप पे देख के लग रहे हो कि हमको सोने चांदी की जरूरत है। अरे मैया हमको सोने चांदी की आवश्यकता नहीं, तो फिर बाबा कहाँ चाहिए? ले मैया मैं तो बड़ी दूर से तेरे लाला को दर्शन करने आयो, मैं तेरे हमने सुनो है तेरे घर लाला भयो है, एक बार वाको हमको दर्शन करवा दे। मैया ने कही कहा बाबा आपके कहियो कहा मांगने आयो तू? बोले मैया मांग नहीं रहे हो, तेरे लाला के दर्शन की इच्छा लेके आयो। मैया बोली बाबा देख तू जो कहेगो मैं तो कु दे दूंगी, तू कहेगो मुकु मैया एक बड़ो महल दे दे तो बाबा महल भी दे दूंगी, पर अपने छोरा के दर्शन नहीं करूंगा। बाबा बोले नहीं कराएगी, क्यों नहीं कराएगी? मैया बोली बाबा तेने अपनो रूप देखियो है, तेरे रूप पे देख के मो 80 बरस की बूढ़ी डोकरी है डर लग रहे है, तो मेरे 4 दिन के छोरा की का हालत होगी? इतनो छोटो सो लाला और तेरे सामने लाऊं कहां पर, तो तेरे गले में ते कोई सांप सपूरो उतर के मेरे छोरा पे चढ़ गए तो? अरे मैया तू नहीं जाने, तेरो छोरा ऐसो वैसो नहीं है, सांपन ते नहीं डर पे वो। अरे मैया वो तो सांप पे सोवे है, और कहा बताऊं मैया आगे भविष्य में चल के तो वो 100 बनवारे सांप के ऊपर नाचेगो। सांप तो वाके वश में रहे। मैया बोली बाबा मेरो छोरा जो है ना ग्वारिया को छोरा है, सपेरा को छोरा नहीं है कि सांपन पे नाचेगो। और वैसे भी बाबा है सके तेरे जहां तू आयो है, जहां लाला ते मिलने आयो है, शायद तू गलत एड्रेस पे आ गयो, कहीं और जानो चाहिए तो, क्योंकि मेरे घर में जो लाला रहे ना वो सांप वापन ते नहीं खेले, वो तो 4 दिन को लाला है, भूख लगे तो रोवे, हंसे, बात करे, तो बाबा लगे तू गलत जगह आ गयो। बाबा बोले नारी मैया मैं गलत जगह नहीं आयो, एकदम सही जगह आयो, तेरे लाला के दर्शन करने आयो। भैया बोली या ब्रज में बहुत लाला है, जा काई के भी दर्शन कर ले। बाबा बोले ना दर्शन तो तेरे ही लाला के करूंगा। भैया बोली देख बाबा तू हमको जाने नहीं है, हम बड़ी हटीली अम्मा है, एक बार अगर जिद कर ली ना तो फिर हमारी बात से हम हटेंगी नहीं। बाबा बोले तो मैया तू भी हमको नहीं जाने, हम भी बड़े हटीले बाबा है, एक बार तेरे आंगन में धूनी रमा के बैठ गए ना तो सब दास दासियों को भी लगा दे तो भी हटेंगे नहीं। मैया यशोदा बोली बाबा तू धूनी रमा च धूना रमा, मैं तो को दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा बोले कब तक नहीं कराएगी, कभी तो अपने छोरा को बाहर लेके आएगी दरवाजे पे ते तब देख लूंगो। मैया बोली मेरे घर में एक नहीं कितने दरवाजे कितने द्वार है, कहीं ते भी ले जाऊंगी, पर जहां तू बैठे होगो वहां ते नहीं लेके जाऊंगी। बाबा बोले अपने छोरा को खेलवे तो बाहर भेजेगी? बोले नहीं भेजूंगी, या के ग्वाल वालन को घरन में ही बुला लूंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले अपने छोरा को ब्याह तो करेगी, ब्याह करेगी छोरा घोड़ी पे तो चढ़ेगो, तब तो बाहर निकालेगी घर से, तब दर्शन कर लूंगो। मैया बोली छोरा कुआरो रख लूंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले बड़ी हटीली अम्मा है यू, हम तो सोचे हम ही है जो कछे, पर ये तो हमारी गुरु है। अच्छो तुम्हें हम भी यही बैठे, जब तक दर्शन नहीं कराएगी हटेंगे नहीं, अंतिम सांस तक मर जाएंगे पर यहां से हटेंगे नहीं। मैया बोली बैठो रे, मैं अपनो काम धंधो संभालू, और मैया भीतर चली। भोलेनाथ जी ने सोचा कि तो गड़बड़ है, मैया तो पूरी एकदम पूरे रोल में है, ये तो दर्शन नहीं कराएगी। फिर सोचा कि चलो जिनसे मिलने आए हैं थोड़ा सा उनसे भी तो अप्रोच लगा लें, कुछ क्या पता काम ही बन जाए। भोलेनाथ जी मन ही मन ठाकुर जी को कहते अरे प्रभु ये कोई बात हुई, हम इतने दूर से आपका दर्शन करने और आप भीतर झुक के बैठ गए, अरे कुछ लीला करके कुछ एक बार कुछ करो ना। अब बेचारे ठाकुर जी बीच में फंस गए, एक तरफ मैया एक तरफ बाबा, किसकी माने। लेकिन बाबा अरे बाबा अगर दर्शन करना है तो कुछ दिन बाद आ जाते, हमको थोड़ा बड़ा हो जान देते, कुछ बोलते, हम अपने पांव से चल के बाहर आ जाते, अब तो 4 दिन के कुछ कर भी नहीं सकते रोने के अलावा। बोले हाँ प्रभु बस यही कर दो, यही करो, यही नाटक आपका सबसे बढ़िया रहेगा। बोले क्या? बोले रोना आरंभ करो। ठाकुर जी ने सोचा ये एकदम बढ़िया नाटक रहेगा, और श्री ठाकुर जी ने पल्ले में पड़े पड़े रोना आरंभ किया, रोना आरंभ किया, जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अब देखो कभी कभी बच्चे रोते हैं ना, एक तो होता सचमुच रोना, एक होता नाटक करके रोना। एक नाटक करके जब बच्चे रोते हैं ना तो बड़े ट्यून में रोते हैं, इसका मतलब पक्का नाटक कर रहा है। वो एकदम रिदम में रोते, एकदम ताल में। तो ऐसे ही ठाकुर जी रो रहे। अब जैसे रोने की आवाज आई, वो आवाज बाहर गई। अब बाहर गई तो एक गोपी बाहर से भीतर आ, अरे मैया कहा कर रही है। तो कुतो लगे छोरा भी पाल लो नहीं आवे, देख छोरा रो रहा है और तू आराम से बैठी है। मैया बोली, गोपी कहा करो? बोले रो रहे हो है, तो याकू कछु दूध पिला, कछु माखन मिश्री खिला। मैया ने दूध पिला दियो, अब भी चुप नहीं हुए। मैया खिलौना लेकर के झन झन झन इलाई, तब भी चुप नहीं हुए। मैया ने पल्ला में झुलाए, तब भी चुप नहीं हुए। गोपी तो चुप ही नहीं है, अब कहा करे। गोपी बोली, मैया मोकू तो लगे तेरे छोरा पे काई गोपी ने नजर लगा दी, क्योंकि मैया भूखो हो तो दूध भी पिला दियो चुप है जातो। मैया कछु खेल खिलौना चाहिए तो चुप है जातो, पर मैया ये तो काई गोपी ने नजर लगाई। मैया बोली, अब कहा करे? बोले कहा करे का, नजर उतारो या की? बोले कैसे नजर उतारे? बोले जा रसोई थे वो लेके आ, राई नोन लेके आ भीतर। मैया गई, नमक लाई, राई मिर्ची लाई और लाला की नजर उतारी। आए की पलाए की, अड़ोसन की पड़ोसन की, भूतनी पिसाचनी, यहाँ की वहां की, इधर की उधर की, सब मेरे लाला के ऊपर से उतर जाए। अब नजर उतारी। अब नजर उतारने के बाद तो काना कम रोने चाहिए, पर ये और उल्टा डबल हो गए और जोर जोर से रोने लगे। गोपी अब कहा करे? ये तो अब भी चुप नहीं हुए। अब गोपी नए नए आइडिया देती जा रही है। बोली, मैया देख दूध भी पिला दियो तब भी चुप नहीं भयो, या को खिलौना भी दियो तो भी चुप नहीं हो, नजर उतारी तो भी चुप नहीं भयो। अब तो मैया वो पक्की पतो चल गई बीमारी कहा है। मैया बोली, कहा बीमारी? बड़ी भयंकर बीमारी है मैया। अरे पर बीमारी है का? बोले, मैया मोकू तो समझ आ गई, या के ऊपर कोई भूतनी चढ़ गई। ओ मैया, अब आप भूतनी को उतारवे के खातिर जब तक प्रयास नहीं करोगी तब तक ये छोरा चुप नहीं होगा। अरे गोपी, भूतनी चढ़ गई है तो भूतनी कैसे उतरेगी? बोले, मैं थोड़ी उतारूंगी, वाकई यहाँ तो कोई बाबा जी, कोई तंत्र मंत्र जानने वालों कोई बुलानो पड़ेगा, वो भूत उतारेगा। तो गोपी, अब कौन को बुला के लाए? मैं तो काय को जानू नहीं हूँ, भूत प्रेत मो तो पतो भी नहीं कैसे रहे। गोपी बोले, मैया टेंशन मतलब मैं हूं ना, अभी काय को बुला के लाती हूँ। तुरंत घर से निकली थी कि दरवाजे पर बाबा भोलेनाथ धूना रमा के बैठे। गोपी ने देखी, नजदीक गई, बाबा का रूप भी कुछ तंत्र मंत्र जैसा ही है। तो जाके पूछी, बाबा एक बात बताओ, तुमको भूत उतारने आते हैं? बाबा बोले, पहले ये बताओ किसको चढ़े, उस पे डिपेंड करता है। बोले, हमारी मैया है ना, वह को लाला है, चार दिन को बड़े जोड़ते रो रहे हो, हमने सोची कोई भूत चढ़ रहे हैं तो भूत उतारे वारो कोई बाबा चाहिए, तो तुम तो सीधी बात पे आओ ना, तुम बताओ तुमको आते हैं कि नहीं आते। बाबा बोले, हाँ, मन में सोचा कि उधर से नाटक चालू हो चुका, तुम भी कर दो। बाबा जी बोले, अरे गोपी क्या बात करती है तू, हमसे पूछ रही भूत उतारने आते कि नहीं आते? अरे गोपी, मेरो तो नाम ही भूतनाथ है, मैंने ऐसे बड़े बड़े भूत उतारे हैं तेरे छोरा के ऊपर, इतनो कोई बड़ी बात है? अभी लेके आए, चुटकी बजाएंगे और सब भूत उतर जाएंगे। गोपी राजी हो गई और खुश होती होती, मैया ओ मैया, बाबा जी मिल गयो, भूत उतार देगो, एक मंत्र पढ़ोगे और सब भूत प्रेत उतर जाएंगे। और कौन सा बाबा जी? बोले, मैया कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यहीं तेरे आंगन में बैठो। मैया बोले, ले कराई काम खराब, मैं कब ते वाते लड़ रही हूँ, दर्शन नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी, और तू वाकू जाके क्या ही के छोरा के भूत उतार दे। तेने वाको रूप देखियो है, कैसो रूप है वाको? गोपी बोली, मैया तो वाके रूप ते कहा लेनो देनो, तू ला जाके लाला को लेके गोद में दूर ठाड़ी है जाइयो, नजदीक मत जाइयो, और बाबा दूर ते ही मंत्र फूंक देंगे और तेरो लाला एकदम स्वस्थ है जाओ। अब तो को बाबा अपनो अहम ज्यादा प्यारो है या लाला को स्वास्थ्य ज्यादा प्यारो, बता। भैया बोली मोको तो लाला प्यारो, तो बस फिर ले अपनी गोद में लाला को और चल मेरे साथ बाहर, डर मत दूर जाके ठाड़िया जी। माँ यशोदा लाला को गोदी में उठाई, ऊपर से काला कपड़ा ढक दिया। कहीं छोरा को बड़ी भोली है मैया, बड़ी भोली है, ढक करके चल पड़ी। आगे बढ़ती बढ़ती डर डर के बढ़ रही है और डरती जा रही है, बढ़ती जा रही है। गोपी पीछे से मैया को आगे बढ़ा रही है। वहां भोलेनाथ खड़े हैं, यहाँ ठाकुर जी खड़े, और जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने ठाकुर जी को देखा और श्री बाल कृष्ण लाल ने बाबा भोलेनाथ को देखा, और जैसे नजर से नजर दोनों की मिली, मिलते ही श्री ठाकुर जी ने रोना बंद कर दिया, एकदम रोना बंद कर दिया। क्या बोली, लगे बाबा जी जानकार तो है, इतनी दूर ते ही मंत्र फूके और छोरा चुप कर दियो। अब मैया को थोड़ा सा और इच्छा जागी और नजदीक जाने की, और नजदीक चली गई बाबा के और पास गई, और पास गई। माँ यशोदा मैया से पूछ रही है, मैया बाबा को दर्शन कराती है। बाबा ने दर्शन किया, दर्शन करने के बाद बोलते हैं कि मैया तेरे छोरा के ऊपर ते भूत सब प्रेत सब उतर गए। मैया बोली ऐसे कैसे उतर गए, जब तक या के कान में कछु मंत्र नहीं बोलोगे तो दोबारा भूत चढ़ जाएंगे, तो कान में कछु मंत्र बोलो तो सही। बाबा भोलेनाथ ने कान में मंत्र बोला, और जैसे मंत्र बोला श्री ठाकुर जी जोर जोर से खिल खिला करके हंस दे। किसी ने पूछा ब्रजवासियों से कि भैया आप बताओ ऐसा कौन सा मंत्र बोला था कान में, तो बोले भैया मंत्र भंत्र कुछ नहीं बोला, चाचा वृंदावन दास जी का पद है और उसमें कहा कि कान में मंत्र नहीं बोला, बाबा भोलेनाथ ने कान में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोल दिया और राधा बोलते ही श्री ठाकुर जी खिलखिला के हंस दी, जोर से हंस दी। भैया बोली हाँ बाबा जी तो बड़ा, देखो अभी तक छोरा रो रहा हंसन लगे। मैया की इच्छा और बड़ी, अच्छो बाबा एक बात बता, भूत तो तोपे उतारने आवे पर तो को हाथ देखनो आवे, भविष्य बतानो आवे। मैया ना ऐसी होती है, एक काम में 10 काम करना चाहती है। कोई एक आयोजन हो, एक कार्यक्रम हो, उसमें एकादशी का उद्यापन भी कर लेंगी, उसमें गृह प्रवेश भी कर लेंगी, एक ही काम में सब हो जाए ऐसा कुछ महाराज मुहूर्त बता दो। तो यहाँ पूछ रही है बाबा से, बाबा अच्छा भविष्य देखना आता है? बाबा बोले क्यों नहीं आता, किसका देखना है? बोले लाला को देखनो। बोले वाके ताई तो लाला को मेरी गोद में देनो पड़ेगो। मैया बोली ऐसे कैसे, तेरी गोद में कैसे दे दूंगी? बाबा बोले तो ठीक है मत दो हम चलते हैं। बोले ना ना ना ना बाबा रुक जा तेरी गोद में दे दूंगी, पर देख बाबा जरा संभाल के, अपने नागन्य ने थोड़ा संभाल के रख, समझा के रख। बाबा ने लाला को गोदी में लिया और हाथ का दर्शन करते करते बोले मैया, अरे यशोदा मैया तेरे तो मैया भाग्य खुल गए, कैसो लाला पायो है तेने मैया, तो को पतो नहीं तेरो कितनो नाम रोशन करेगो मैया, तो को पतो नहीं यू बड़ो है के बहुत बड़ो राजा बनेगो मैया, बड़ो है के या के सोने के महल होंगे, और तो और मैया हजारों लाखों या के दास दासी होंगे। मैया बोली बाबा मैंने तो को काम की बात पूछी और तू कहा उल्टी सीधी बात बता तो जा रहे हो, अरे राजा बनेगो नाम रोशन करेगो बड़ो होगो महल बनाएगो तो वो तो या के ना ही होगो, मेरे निया का होगो, मेरे निया भी तो कुछ बता। बाबा बोले मैया तू बता तो को तेरे निया कहा चाहिए? बोले मोकू तो बस इतना बता दे कि मेरे घर बहू कब आएगी, मेरे लाला को ब्याह कब होगो। बाबा बोले 4 दिन को तेरो छोरा है, अभी यहाँ पे आँख खोलनी आवे नहीं और तो बहू की पड़ी है। बोले ना ना बाबा अब देखना, यू कालो कलूटो सो है तो सारी ब्रज की गोपी कहें कि या को कोई अपनी छोरी नहीं देगो, तो बाबा तू ही बता छोरी नहीं, अब मैंने तो कितने सपने सजाए, बहू आएगी मेरे पाम दबाएगी, मोकू रोज नए नए व्यंजन खवाएगी और बाबा बताना, या को ब्याह होगो भी के नहीं होगो, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है। बाबा ने हाथ देख करके मैया को बता रही, मैया कैसी बात करती है तू, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है पूछ रही है। अरे मैया, या के हाथ में इतनी लंबी ब्याह की रेखा है कि यहाँ तक नहीं समा रही। बोले मतलब मैया, तेरे छोरा की 1, 2, 10, 50, 100 नहीं 16,108 ब्याह होंगे। अब जैसे मैया ने सुनी तो बस वही खड़ी की खड़ी। बाबा बोले कहाँ सोच रही है मैया? बोले बाबा न्यू सोच रही हूं, अगर दिवाली वाले दिन मेरी सबरी बहू मेरे पाम छीने खट्टी आ गई तो मेरी का हालत होगी। बाबा वहीं बैठे बैठे मेरे तो 16,108। अरे बाबा काय को पागल बना रहे हो, या कलुआ को तो एक बहू नहीं मिलेगी, तू 16,108 की बात कर रहे हो, कौन देगो या को अपनी छोरी। बाबा ने कहा मैया, अब जैसा तू सोचे सोच, भविष्य है देख लेना। मैया ने सोचा कि बाबा ऐसे ही मजाक कर रहे, मजाक में बोल दिया, पर मैया उसको मजाक में ले गई, अब उसको क्या पता ये सत्यता है। अच्छो भैया अब मैं चलूं, समय है गयो है, भविष्य बता रहे हैं। ठाकुर जी कहते बाबा जी, अब बहुत भविष्य बता लिया आपने, अब आप जाइए कैलाश पर्वत पर, मैया जी आपको याद कर रही होंगी, अब आप प्रस्थान करिए। तो भोलेनाथ जी मैया को प्रणाम करते हैं, कहते मैया अब मैं चलता हूँ। मैया कहती ना ना बाबा, तू यहाँ ते मत जा, ब्रज छोड़ के मत जा। क्यों? क्योंकि क्या का पतो कब मेरे छोरा को फिर नजर लग जाए, तो कोई तो चाहिए नजर उतारवे को। तब मैया कहती है, रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे तू तब तब दर्शन दीजे। यही रह जाओ बाबा। और बाबा भोलेनाथ वहीं ब्रज में अपने लाला के सानिध्य में रहे। आज भी ब्रज जाइए, चार स्थान पर चार रक्षक बन करके बाबा भोलेनाथ ब्रज में विराजमान।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: नमस्कार दोस्तों, रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 7 सौ श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिए। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता।

0: अगर आप खुद पर भरोसा रखें तो कुछ भी संभव है।
1: ये मत कहो खुदा से।
0: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल गाइड बीके शिवानी जी के विचार।
1: ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
2: क्या कभी कभी ऐसा होता है हमारा मूड बिल्कुल अच्छा होता है, परफेक्ट मूड में हम बैठे हैं, कोई और आया मूड खराब के साथ और थोड़ी देर के बाद

थोड़ी देर के बाद पूरे घर के सबके फोल्डर खुल सकता है। फिर हम कहते हैं शांति थी घर में जब तक ये नहीं आए, अब ये आए तो पूरा घर क्या हो गया, अशांत हो गया। क्यों ऐसा हुआ? वो आत्मा अपनी अशांति का फोल्डर खोल के आई, हमने ध्यान नहीं रखा, तो उनके अशांति के वाइब्रेशन से हमारे पास भी जो एंगर का फोल्डर है वो खुल गया। लेकिन हमने नहीं कहा कि मैंने अपना खोला, हमने कहा इनकी वजह से है, ब्लेम भी हमने उन पर ही डाल दिया सब पर। और फिर कई बार सबके फोल्डर खुल जाते हैं, एक इरिटेट हो जाता है, एक नाराज हो जाता है, एक रोने लगता है, एक उदास हो जाता है, एक कमरा बंद करके उधर चला जाता है। हम कहते हैं एक आए सारा घर उथल पुथल हो गया। हो सकता है ऐसा? हो सकता है? हो सकता है। किस किस को लगता है ऐसा हो सकता है, एक की वजह से पूरा घर बदल सकता है? वेरी गुड, तो फिर तो हो सकता है, फिर तो हो सकता है। फिर मंडे को क्या हो सकता है? फिर मंडे को क्या हो सकता है कि एक जाए और कैसा जाए, एक जाए और कैसा जाए, पीसफुल जाए, काम जाए, एक्सेप्टिंग जाए, रिस्पेक्टफुल जाए। और क्या ऐसा हो सकता है एक जाए और पूरा घर बदल जाए? इक्वेशन तो सेम ही होगी ना, जो इक्वेशन नेगेटिव में अप्लाई करती है वही इक्वेशन प्योरिटी में भी तो अप्लाई करेगी। दैट इज व्हाई व्हेन वन चेंजेस, चेंज ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स हैपनिंग। कभी भी नहीं सोचना लेकिन हमारे घर में तो अलग है, वर्क प्ले, नो, पावर ऑफ वन, एक में शक्ति है, एक सारे वातावरण को बदल सकता है। सिर्फ वो एक को ध्यान क्या रखना है, वो एक को ध्यान क्या रखना है, मेरा वो वाला फोल्डर खुला रहे। अब आपको लगता है शांति का फोल्डर परमानेंट लाइफ टाइम के लिए खुला रहेगा यहां से जाने के बाद? देखो ये याद रखना, आसपास वाले नहीं आए थे खोलने के लिए फोल्डर, तो उनका तो दूसरा वाला खुला हुआ होगा फोल्डर। सारा दिन हमारी वाइब्रेशंस का असर दूसरों पर होता है। हम पीसफुल हैं, हमारी वाइब्रेशन का असर दूसरे पर होता है, लेकिन दूसरा डिस्टर्ब्ड है तो उसका असर भी हमारे ऊपर होता है। तो कभी कभी क्या होता है, मंडे तो बड़ा पीसफुल बीतता है, अच्छा आसपास के लोग भी ना थोड़ा ऐसे करके देख रहे होते हैं, अच्छा बड़े आए, देखते कितना दिन टिकता है इनका, बड़ी चेकिंग होती है घर जाने के बाद, अभी देखते हैं, नए नए आए ना वापस, अभी देखते हैं, चले तो सही, चार दिन और बीते तो सही, दे तो टेस्टिंग बड़ी होगी वापस जाने के बाद, तो वो भी होगा। फिर धीरे धीरे हम अपने नॉर्मल रूटीन में जाएंगे, आसपास की एनर्जीज डिफरेंट होंगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, एंड पता ही नहीं चलता कब हमने फिर से वापस पुराने फोल्डर खोल लिए। हो जाता है, और फिर हम क्या कहते हैं, वो सब वही ठीक था आश्रम में, ये बच्चे नहीं है उनके, उनको कोई काम नहीं करना है, उनको क्या पता है कितनी टेंशन होती है, नहीं फिर गया। फिर नेक्स्ट ईयर जब कॉन्फ्रेंस आती है ना, फिर सेंटर पे बोलते हैं हमको भी जाना है वहां पे, हाँ बहुत पीसफुल था अभी वापस हमें 3 दिन। वी आर नॉट कमिंग हियर फॉर 3 पीसफुल डेज। हम यहाँ से विधि सीख कर जाते हैं, इसीलिए मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टडी, 3 दिन में कोई भी संस्कार परमानेंटली चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन जो फोल्डर खोला फिर उसको मेडिटेशन से क्या करना है, रोज खोलना है, रोज खोलना है, रोज खोलना है, रोज स्टडी करते हैं, रोज मेडिटेशन करते हैं, रोज अटेंशन रखते हैं, अटेंशन। ये चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा स्वभाव वो 5th फोल्डर से ही चलने वाला है रोज, चाहे कितने भी साल बीत जाए। जैसे हेल्थ का रोज ध्यान रखते हैं, हेल्थ का रोज ध्यान रखते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते एक बार अच्छे से खा लिया और चलेगा शरीर हमेशा, नो, इट इज डेली, बॉडी हैज टू बी नरिश्ड डेली, सोल आल्सो हैज टू बी नरिश्ड डेली। हम इसको नरिश नहीं कर रहे बहुत सालों से, और डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी आ चुकी हैं। तो सडनली पिछले 20-30 सालों में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया, एंड एवरी ईयर द शिफ्ट इज इंक्रीजिंग।
क्यों डिप्रेशन बढ़ा, क्यों बीमारियां बढ़ी? क्योंकि हम भाग रहे थे अपने काम कारोबार में, इतना भाग रहे थे, कमाने में इतने बिजी थे कि हमने रुककर इसको कभी नरिश ही नहीं किया। आज सुबह भी जब मैं आ रही थी एयरपोर्ट पे, फिर उधर जहां भी जो लोग मिले, हाँ जी हाँ जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, अच्छा आप आइए मेडिटेशन सीखिए। हाँ हम सोच तो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अकाल आया पड़ा इस टाइम सृष्टि के ऊपर। Really, it's an epidemic. Everyone says the same line. And वो इतना deep belief system बन गया है कि वो एक collective vibrations of the world, वो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं I'm very busy, time नहीं मेरे पास। कभी आप सोचो छोटा बच्चा अगर बोलेगा ना I'm very busy, time नहीं है, तो वो बड़े होके क्या करेगा? वो अभी से feel करते हैं उनके जीवन में कमी है। So, ये जो क्यों हुआ, डिस्चार्ज्ड बैटरी सारा दिन मेहनत कर रही है, सारा दिन मेहनत कर रही है, तो ऑब्वियसली टाइम की कमी हमेशा महसूस होगी क्योंकि थकी हुई हालत में सारा काम कर रही है। तो हमें क्या करना पड़ता है, थोड़े दिन के लिए टाइम निकालना पड़ता है, थोड़े दिन के लिए टाइम निकालना पड़ता है, वो एक घंटा निकालना पड़ता है सिर्फ थोड़े दिन के लिए। जैसे ही थोड़े दिन के लिए वो एक घंटा निकाला, तो ये आत्मरूपी बैटरी क्या होने लगती है, चार्ज्ड होने लगती है। जब ये चार्ज्ड होने लगती है, इसका वो फिफ्थ फोल्डर ज्यादा देर खुला रहता है सारा दिन। जब ये ज्यादा देर खुला रहता है, तो इसका सारा दिन कैसा बीतता है, सारा दिन कैसा बीतता होगा फिफ्थ फोल्डर ज्यादा खुला हुआ तो? वेरी पीसफुल, काम, कोई कुछ कहता है ज्यादा असर ही नहीं होता, आगे की कोई चिंता नहीं होती, निश्चिंत हो जाते हैं, मेहनत करते हैं, चिंता नहीं करते, ध्यान रखते हैं परिवार का, डरते नहीं है, दो बातों में बहुत फर्क है। और जब ऐसा जीवन जीना शुरू करते हैं, तो फिर टाइम टाइम टाइम टाइम पहले से कई गुना ज्यादा मिल जाता है। आप जब यहां से जाने के बाद सेंटर पर जाएंगे, आप देखेंगे वहां भाई बहने आपकी तरह परिवार संभाल रहे हैं, अपने ऑफिस संभाल रहे हैं। जब वो पहली बार आए थे तो वो भी कहते थे टाइम नहीं है, अब उनके पास इतना टाइम है कि वो घर भी संभालते हैं, ऑफिस भी संभालते हैं, आकर सेंटर भी संभालते हैं और सेवा भी करते हैं उनकी, जिनको वो जानते भी नहीं है, इतना टाइम आ जाता है। क्यों आ गया? यहां का ध्यान रखना शुरू किया, नेगेटिव वाइब्रेशन घटनी हो गई। जैसे यहां की हवा अच्छी है, जब साफ हवा में जाते हैं तो हमारा चलने का स्टैमिना बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ता? यही आप किसी शहर में जाओ, इस टाइम दिल्ली जाओ, लोग वहां लैंड करते हैं, उनको खांसी होने लगती है, पोल्यूशन स्टैमिना डाउन लाती है, और जैसे पोल्यूशन हटी सफाई में आए स्टैमिना बढ़ जाता है। आप फिजिकली यहां काम करेंगे, थकावट कम होगी, सिमिलरली इमोशनल पोल्यूशन, जब इमोशनल पोल्यूशन इतनी होगी यहां और यहां, थकावट तो सारा दिन लगेगी, एंड देन वी फील टाइम नहीं है, चल रहा है, भाग रहे हैं, कर रहे हैं। और जैसे ये इमोशनल पोल्यूशन हटी, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, काम जल्दी होगा, टाइम बहुत होगा। तो यहां से जाने से पहले अपने आप का कमिटमेंट ये है कि मैंने जो 3 दिन निकाले हैं, ये 3 दिन बैटरी को क्या करने के लिए थे, चार्ज्ड। इसके बाद हर रोज 1 घंटा होगा उस चार्ज को बढ़ाने के लिए, नहीं तो ये 3 दिन का इफेक्ट, इस इल्यूजन में बिल्कुल ही नहीं रहना कि ये 3 दिन का इफेक्ट कोई लाइफ टाइम चलता है, ये 3 दिन भी नहीं चलता, एक्चुअली नहीं चलता है। कईयों का तो स्टेशन एयरपोर्ट तक जाने तक ही कम हो जाता है, पता चल गया पहुंच के 4 घंटे ट्रेन लेट है, उधर ही परेशान हो जाएंगे, फिर कहेंगे ऊपर ही ठीक था सारा। सो इट इज नॉट इजी, ये बहुत जन्मों की डिप्लीशन है, ऐसे नहीं 3 दिन में, 3 दिन में वी आर गोइंग टू लर्न द वे ऑफ डूइंग इट, नॉट दैट इन 3 डेज इट विल गेट चार्ज्ड, नो। लेकिन ये चार्जिंग डेफिनेट है अगर हम रोज उसको 1 घंटे के लिए क्या करते रहेंगे, फिर से चार्ज्ड। हमारे यहां जो सोच चल रही है, जो फीलिंग चल रही है, इसका क्रिएटर कौन?
इसका क्रिएटर कौन? कौन क्रिएट करता है हमारी थॉट्स एंड फीलिंग्स? आवर सब. जब हम कहते हैं हम इरिटेट हुए, गुस्सा हुए, नाराज हुए, हम ब्लेम किस पे डालते हैं? दूसरों पे. हम कहते हैं उनकी वजह से ऐसा हुआ. ये सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम है जिसकी इक्वेशन को हमें आज चेंज करके जाना है. हमें गुस्सा कौन दिलाता है? जैसे ही हम कहते हैं उनकी वजह से नाराज, उनकी वजह से इरिटेट, पावर सारी किसको दे दी? क्या ये पॉसिबल है कि कोई गलत व्यवहार करे और हम पीसफुल रहे? क्या ये पॉसिबल है कोई गलत व्यवहार करे हम पीसफुल रहे? वो रूडली बात करे हम प्यार से बात करें, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? वो बहुत बहुत बहुत गलत करे हम अच्छे से बात करें, ये पॉसिबल है? और वो तो बहुत बहुत बहुत ही गलत कर दे और हम उसको दुआएं दें, ये पॉसिबल है? हां जी. नो. खड़े हो जाइए. नो. हां जी हां जी. कोई बात नहीं. दे आर बिहेविंग रॉन्गली, वेरी बैड, रूडली, चीटिंग, मैनिपुलेटिंग, एवरीथिंग. कैन वी बी नाइस, काइंड, रिस्पेक्टफुल? नो. व्हाई? व्हाई? लेट्स थिंक व्हाई. Why? अच्छा, उनके साथ जो खड़े हैं वो खड़े हो जाइए एक बार, जो साथ में बैठे. भाई सर, प्लीज स्टैंड, प्लीज स्टैंड. हाँ, एवरी वन विजुअलाइज वन पर्सन इन योर लाइफ, टू पीपल, राइट? टू पीपल. ही विल बिहेव हिज वे. सपोज ही शाउट्स राइट नाउ एट यू, कैन यू रिप्लाई रिस्पेक्टफुली? ओके. Why no? Not possible. She is behaving her way. Can you respond your way? She is shouting. Can you be quiet? I can't be quiet. No. Who irritates you? She or you yourself? She irritates you. She irritates you. सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम. बैठिए. थैंक यू. दिस इज वन बिलीफ सिस्टम विच इज नॉट अलाउिंग अस टू बी आर सेल्फ. नाउ ब्रिंग एनी वन पर्सन ऑफ योर लाइफ हियर, हियर एंड यू आर हियर. ये उनका बिहेवियर है. Who is creating my thoughts and feelings? Who is creating my thoughts and feelings? Forget behavior, just thoughts and feelings. They are behaving like this. Who is creating my thoughts and feelings? Who is creating my words and behavior? Can they irritate me or do I choose to get irritated? Very good. That much clarity we need. Who chose the irritation? Me. Who chose the anger? Me. Who chose to get hurt? Me. Who created those thoughts? Me. What did they create? They created their behavior. What did I create? Is my behavior dependent on their behavior? It is dependent on me. All that I have to take care is when they do something which is their way, I have to respond my way. एक इक्वेशन आज से चेंज कीजिएगा, चाहे गुस्सा भी आ जाए. लेकिन जब गुस्सा आए तो ये नहीं कहना इनकी वजह से, because that is not true. बार बार कहने से कहने से कहने से क्या हो गया, हमने एक संस्कार क्रिएट कर लिया विच सेड एवरीथिंग आई एम फीलिंग इज बिकॉज ऑफ अदर पीपल. सिचुएशन ही ऐसी थी तो टेंशन तो होनी थी. तो टेंशन किसने क्रिएट की? सिचुएशन ने. उसी सिचुएशन में चार लोग होते हैं, उसी सिचुएशन में चार लोग होते हैं, चारों को सेम टेंशन होती है? नहीं. ये एक सेम बिहेव करता है, चार लोग इस तरफ हैं, चार लोगों की फीलिंग्स एक जैसी होती है? नहीं.
This is stimulus. This is response. Stimulus is in their control. Response is in my choice. आज एक मुक्ति मुक्ति यहां जो चल रहा है हमारे वर्ड्स हमारे बिहेवियर एवरी टाइम से दिस इज माय चॉइस दिस इज माय क्रिएशन डोंट पुट द फिंगर ऑन पीपल और सिचुएशंस कि परिस्थिति और लोगों की वजह से मेरा ऐसा हो ट्रू नहीं है ये बात दे विल बी देयर वे आई विल बी माई वे फिर आप चूज कर सकते हैं कौन सा वे आपको होना है लेकिन एटलीस्ट ये ध्यान रखना होगा कि ये रिस्पॉन्स कौन चूज कर रहा है मैं गुलामी का जीवन नहीं जीना दूसरों के व्यवहार के गुलाम वो रोज अपना व्यवहार करेंगे हम रोज डिस्टर्ब होंगे तो हम उनके व्यवहार के गुलाम हम उनके व्यवहार के गुलाम स्पिरिचुअलिटी मेक्स अस इमोशनली इंडिपेंडेंट लोग आजकल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं बच्चे कहते हैं आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट मैं अपने मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगना चाहता वाइफ कहते हैं आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट मैं अपने हस्बैंड से पैसे नहीं मांगना चाहती पैसे किसी से मांगना नहीं चाहते खुशी मांगने के लिए सारा दिन खड़े प्लीज बी नाइस टू मी सो दैट आई विल बी हैप्पी सारा दिन खड़े इमोशनली इंडिपेंडेंट मीन्स फॉर मी टू बी हैप्पी यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन वो अपना व्यवहार करेंगे हम अपना व्यवहार करेंगे हम रिएक्ट क्यों कर देते हैं क्योंकि हमने अपने आप को चार्ज नहीं किया है तो जब वो नेगेटिव फाइल खोलते हैं तो हम भी इमिजिएटली कौन सी फाइल खोल देते हैं नेगेटिव और ब्लेम किस पर डाल देते हैं एक टीम में 5 लोग हैं सुबह सुबह एक जना एंटर किया उसकी तबीयत ठीक नहीं है खांसी जुकाम सर्दी लेकर वो सुबह सुबह ऑफिस आ गया शाम तक बाकी 4 में से भी एक को हो गया तो वो एक ने उसको क्या कहा मैं बीमार किसकी वजह से हो गया क्या ये बात सच है बाकी तीन क्यों नहीं हुए क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है मैं क्यों हुआ क्योंकि मेरा वीक है लेकिन मैंने ये नहीं रियलाइज किया मेरा वीक है मैंने कहा उनकी वजह से मुझे खांसी हो गई है तो मैंने अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया सिमिलरली वो 5 लोग थे एक एंटर हुआ मूड खराब है सुबह सुबह इरिटेट हो रहा है सुबह सुबह चिल्ला रहा है लोगों के ऊपर मूड ही खराब है घर से झगड़ा करके आया उसके मूड की वजह से मैंने भी रिएक्ट कर दिया और मैंने कहा इसकी वजह से मेरा भी मूड खराब हो गया ये नहीं कहा मेरी शक्ति घटी हुई थी तो मैंने भी रिएक्ट कर दिया ब्लेमिंग पीपल एंड सिचुएशंस फॉर हाउ वी थिंक एंड फील इज द बिगेस्ट इल्यूशन तो एक इक्वेशन जो भी यहां चले उसका जिम्मेवार कौन हम जब हम पावर अपने पास रखेंगे हम चेंज हो सकते हैं जब हम कहेंगे उनकी वजह से तो हम किसको चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं उनको हम इरिटेट होते हैं किसकी वजह से कोई काम कर रहा है हमने उसको काम करने के लिए बोला वो टाइम थोड़ा धीरे लगा रहा है ज्यादा टाइम लग गया वो ठीक से नहीं कर रहा है इरिटेट कौन हो रहा है हम हो रहे फिर भी उसने ठीक से नहीं किया तो गुस्सा कौन हो रहा है हम एंड जब हम ये कर रहे हैं तो एनर्जी किसकी घट रही है हम काम हो जाएगा काम हो गए आज बहुत काम हो गए बहुत प्रॉस्पेरिटी मिली बहुत कुछ कमाया घर में सब कुछ आ गया लेकिन जिस तरह कमाया इरिटेट होके क्रिटिसाइज करके मजाक उड़ा के किसी की निंदा करके जिस तरह कमाया उसकी वजह से घर में खुशी सेहत और रिश्ते घट गए बाकी चीजें बढ़ गई
और फिर इतनी इल्यूजन में रहे कि हमने सोचा जितनी चीजें बढ़ जाएंगी उतने हम हैप्पी होंगे. दैट वॉज अनदर वेरी बिग इल्यूजन. तो काम करना, काम करवाना, लेकिन सब कुछ करते हुए किसका ध्यान रखना, किसका ध्यान रखना? काम करना, काम करवाना, लेकिन सब कुछ करते हुए किसका ध्यान रखना? ये बैटरी कैसे रहनी चाहिए? चार्ज्ड. ये ग्लास है, भरा हुआ है. इस पूरे हॉल में चलना है, सबसे मिलना है, सबसे बात करनी है, ऐसे ऐसे करके स्टेज पे वापस आना है. शाम को ग्लास भरा हुआ होना चाहिए. सुबह निकलना है, सारा काम करना है, शाम को वापस आना है, ग्लास भरा हुआ होना चाहिए. हो सकता है? आप में से कौन कौन कर सकता है? ये सीढ़ी से उतरना है, पूरे हॉल का राउंड लेना और ये सीढ़ी से वापस आना है विद ग्लास फुल. कौन कौन कर सकता है? सब नहीं, हाथ ही नहीं उठा रहे सब. देखो आप पीछे, हाथ ही नहीं उठाते. कर सकते हैं ना. करने के लिए क्या करना होगा? सिर्फ करना क्या होगा? प्रायोरिटी. नींबू चम्मच खेला था स्कूल में? गुड. भागना था, भागना था. कई बार तो दो लोगों के पाव भी बांधे गए थे साथ में. लेकिन ध्यान किस पे रखना था? नींबू गिरना नहीं चाहिए. इवन अगर आप फर्स्ट आ गए लेकिन नींबू गिर गया, हम हार गए. क्योंकि हम भागने पे ही फोकस कर रहे थे, नींबू तो स्टार्टिंग में ही गिर गया था. और हम एंड में पहुंच गए, हमने कहा ये आई केम फर्स्ट, उधर उसने कहा डिस्क्वालिफाइड. बोले क्यों डिस्क्वालिफाइड? बोले नींबू तो पहले गिर गया था. वो नींबू कहाँ है? वो नींबू कहाँ है? नींबू कहाँ है? नींबू यहाँ है. भागना है, बहुत भागो. जितना अभी तक भाग रहे थे उससे भी फास्ट भागो. लेकिन सिर्फ ध्यान रखना है, भागते हुए नींबू नहीं गिरना चाहिए, नींबू नहीं गिरना चाहिए. एंड डेफिनेटली दूसरे को नहीं ब्लेम करना, मेरा नींबू गिरा दिया. नाउ वर्क. यहाँ दैट इज प्रायोरिटी इन लाइफ. ये प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए. वी हैव टू नो व्हाट इज इट देयर वी आर रनिंग. हम भाग रहे हैं लेकिन भागते हुए खुशी गिर गई. कभी कभी तो सुबह सुबह ही खुशी गिर जाती है, अभी तो घर से बाहर भी नहीं निकले. फिर रास्ते में ट्रैफिक हो तो दूसरी जगह खुशी वहां गिर जाती है. रोज उसी रास्ते जाते हैं, रोज उसी ट्रैफिक में खड़े होते हैं, लेकिन रोज इरिटेट होते हैं. रोज आसपास के लोगों को कुछ कुछ बोल भी देते हैं बंद गाड़ियों के अंदर. ये भी नहीं सोचते कि सामने वाले को तो सुना ही भी नहीं दे रहा हम क्या बोल रहे हैं. एनर्जी किसकी डिप्लीट हो रही है? मेरी. नींबू गिर गया. राजयोग मेडिटेशन मीन्स टेकिंग केयर ऑफ द सेल्फ. मेडिटेशन मीन्स ध्यान. ध्यान, द वर्ड इज सो ब्यूटिफुल. ध्यान, अपने मन का ध्यान रखना. आपके आसपास सारे लोग भी अपना नींबू गिरा दे, आपका गिरना नहीं चाहिए. और शाम को जब हम घर आए, बैक टू फैमिली, ये ग्लास कैसा होना चाहिए था? आज दोनों पेरेंट्स घर आ रहे हैं खाली ग्लास के साथ. धन भरपूर, आत्मा रूपी ग्लास खाली, तो बच्चों को क्या देंगे? समान ही दे सकते हैं ना फिर सिर्फ. क्योंकि समान भरपूर, शक्ति खाली, दोनों आ रहे हैं, तो बच्चों को क्या मिलेगा? आज स्कूल के बच्चे प्रोजेक्ट में डिप्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं. स्कूल के बच्चे सुसाइड की बात करते हैं. ये कोई सक्सेस की निशानी है हमारे समाज की? ये सफलता है? इज दिस सक्सेस? नो. व्हाई? बिकॉज लास्ट फ्यू इयर्स व्हाट वी डिड, वी जस्ट केप्ट रनिंग विदाउट टेकिंग केयर. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर स्टिल गोइंग टू रन बट विद टेकिंग केयर. यहां ध्यान रखते हुए भागना है. और फिर वो जो भागना भी होगा ना, उसको एंजॉय करेंगे. ये ध्यान रखते हुए कि ये समान है, ये सुकून है. यहां समान मिलता है, यहां सुकून मिलता है. शाम को हमें सिर्फ सामान कमा के घर नहीं आना है. क्या कमा के घर लाना है? सुकून कमा के घर लाना है. बच्चों को चीजें नहीं देनी, सिर्फ परिवार को सुकून देना है.
एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे ऑफिस से हर एक जो घर जाए शाम को, वो सुबह जितना खुश आया था उससे ज्यादा खुश शाम को जाना चाहिए. People should go home happier than what they came in the morning. Then we are sending happy parents home. We are sending happy parents home. And if we send happy parents home, next day morning वो और happy आएंगे. और उसके अगले दिन वो और happy आएंगे. और day by day हमारी खुशी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. आज क्या हो रहा है? डे बाय डे हमारा तनाव बढ़ता जा रहा है. तो उसके लिए जब हम चेंज होंगे, हमारा घर का वातावरण चेंज होगा, हमारा वर्क कल्चर भी चेंज हो जाएगा, हमारा लोगों के साथ व्यवहार, बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा. सिर्फ अगर हम एक रोज एक घंटा दें, बहुत लोगों के जीवन बदल जाते हैं. एक की नहीं बदलती, इट्स एन इन्वेस्टमेंट विच हैज मल्टीफोल्ड रिजल्ट. बहुतों की जीवन बदलेगी अगर एक ने अपनी बैटरी को क्या करना शुरू किया, चार्ज करना शुरू किया. तो एक की बैटरी से औरों की बैटरी भी क्या होती जाती है फिर, और डिस्चार्ज बैटरी से क्या हो जाती है औरों की बैटरी.

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
5: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: Anjali.
1: एक नई सुबह, नई एनर्जी और एक नए दिन के साथ और फिर से लेकर आ गई हूँ रेडियो महारानी पर मॉर्निंग एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और शो लेकर आई हूँ आप सभी का मनपसंद मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ पर बहुत सारी बातें आपके साथ करने वाली हूँ। इंफोटेनमेंट का डोज जहाँ पर आपको डबल मिलने वाला है और सुबह की तरह ना ये सुबह भी बड़ी हसीन होने वाली है। तो गर्मा गर्म मसाले वाली चाय की गर्मा गर्म चुस्की लीजिए और एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी के मॉर्निंग एक्सप्रेस शो को, जहाँ आपको मिलता है इंटरेस्टिंग स्टोरी, स्पेशल डेज, फन फैक्ट्स और आपके फेवरेट कानों का तड़का। तो बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने

शानदार सुप्रभात के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो चलिए बात करते हैं वेदर की। आज तो आज फरीदाबाद का वेदर ना बड़ा ही सुहाना है। आज हाईएस्ट टेम्परेचर जाने वाला है 33 डिग्री। इसी के साथ अगर मिनिमम की बात करें 27 डिग्री है। साथ ही विंड स्पीड आपको 13 मिलने वाली है और ह्यूमिडिटी मिलने वाली है 72%। और आज दिन ना थोड़ा सा सनी सनी है, यानी कि आज बारिश नहीं होने वाली। लेकिन पिछले कुछ दिनों की बात करें तो बहुत ज्यादा बारिश हुई है। खैर मौसम तो बहुत प्यारा है और इस बदलते मौसम में अपना ख्याल जरूर रखेगा। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ तो अर्ज किया है।
4: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
3: कर रहे हैं आप, सुनो तो
4: इरशाद।
3: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
4: तुम्हारे नंबर पे?
3: हाँ जी।
4: अच्छा,
3: और उन्होंने पूछा क्या?
4: क्या पूछा?
3: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
4: क्या बात कर रहे हो?
3: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
4: अच्छा,
3: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
4: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
3: नहीं नहीं, रेंट पे है, EMI पे।
4: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
3: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
4: बाय।
3: सुनो तो, कहाँ चली?
4: बाय।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। जब गाड़ी में बजे आरजे अंजलि की आवाज, समझो मॉर्निंग हो गई एकदम फर्स्ट क्लास।

साता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज, बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: क्या कभी आपने सोचा है हम रोज कितनी चीजों को बिना नोटिस के फील करते हैं। सुबह की चाय की खुशबू हो, बारिश की आवाज हो, पसंदीदा गानों की मेलोडी हो और घर के खाने का टेस्ट हो, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम बिना छुए फील कर लेते हैं। आज मैं क्यों बातें कर रही हूँ उन सारी चीजों के बारे में बताऊंगी आपको। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। हमारे फाइव सेंसेस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कितना खूबसूरत और खास बना देते हैं। अगर बात करें सबसे पहले देखने की, फिर बात आती है सुनने की, फिर बात आती है सूंघने की और फिर आता है चखना और सबसे खास चीज है महसूस करना। सो बेसिकली फाइव सेंसेस है जिनका हम इस्तेमाल अपने डेली बेसिस पे करते हैं। हम इतनी फास्ट लाइफ जीते हैं कि कई बार इन छोटी छोटी खुशियों को नोटिस ही नहीं करते हैं। तो बस आज एक छोटा सा चैलेंज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एंड चैलेंज बहुत ही सिंपल सा है। अपनी फेवरेट चीज को थोड़ा सा ध्यान से एंजॉय कीजिए, चाहे वो एक कप चाय हो, एक गाना हो या फिर एक सनसेट का व्यू, क्योंकि लाइफ सिर्फ जीने के लिए नहीं महसूस करने के लिए भी होती है। सो इसी के साथ एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक जो है खास आपके लिए, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।
1: कार्निवल, द लास्ट राइड, किंग।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है।

0: पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
1: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ अर्जुन सिंह आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। पुरानी चीजों को सीधा थ्रो कर देना इजी है, लेकिन उन्हें कुछ नया और यूजफुल बना देना, वही तो क्रिएटिविटी है जो हमें ये सिखाता है कि पुरानी चीजों को वेस्ट नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। फिर चाहे बात हो पुरानी बॉटल से प्लांटर बनाने की, या फिर अपनी ओल्ड टी शर्ट से शॉपिंग बैग बनाने की, या ओल्ड जार से रूम डेकोर बनाने की, ये सारी चीजें ना पुरानी चीजों में जान डाल देती है और कभी कभी चीज बेकार लगती है और वही थोड़ी क्रिएटिविटी के साथ ना हमारी फेवरेट बन जाती है। सो एक छोटा सा डिफरेंस लेकर आती है सारी चीजें। पहली बात तो वेस्ट कम होता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और हमारा एनवायरनमेंट को सपोर्ट मिलता है। सो हर पुरानी चीज का एंड नहीं होता, कुछ चीजों का नेक्स्ट वर्जन होता है। सो इस चीज का ख्याल रखिएगा और आज अपने घर में जितनी भी पुरानी चीजें ना जो आपको वेस्ट लगती है, बस अपनी क्रिएटिविटी की जादू की छड़ी वहाँ घुमा दीजिए और पुरानी चीज को ना कुछ नया बनाइए। सो आज घर में जितनी भी पुरानी चीजें ना जाकर जरूर ढूंढेगा और उन्हें अपसाइकिल कर दीजिएगा। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: जब का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
4: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
0: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंजलि, आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज हम बहुत ही खास टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। क्या कभी आपको भी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छा होना कभी कभी आपको बहुत ज्यादा थका देता है? यानी कि अच्छा इंसान बनना अच्छी बात है, लेकिन हर बार खुद को लास्ट में रख देना शायद उतना हेल्दी नहीं होता। कभी आपने फील किया है? बिकॉज एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब काइंडनेस धीरे धीरे पीपल प्लीजिंग बन जाए, जब हर बार हाँ बोलते बोलते हम अपनी नीड्स इग्नोर करने लगे, तो स्ट्रेस बढ़ सकता है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस का इफेक्ट कभी कभी स्लीप, एनर्जी और मूड पर भी दिख सकता है। सो यहाँ ना मैं आज आपके लिए कहानी लेकर आई। कहानी बहुत छोटी है। ये कहानी हमें बताती है कि एक इंसान सबकी हेल्प करता था, एक्स्ट्रा काम भी ले लेता था, कभी मना नहीं करता था। तभी एक दिन किसी ने पूछा, तुम खुद का ध्यान कब रखते हो? और उसके पास जवाब था, नहीं, मैं खुद का कभी ध्यान ही नहीं रखता। सो ये कहानी हमें बताती है कि दूसरों का ख्याल रखने से पहले खुद के बारे में जरूर सोचेगा, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई आपके बारे में सोचे। एंड आज का थॉट ऑफ द डे ये है, काइंड होना अच्छा है लेकिन बाउंड्रीज भी उतनी ही जरूरी है। सो कभी कभी नहीं बोलना रूड नहीं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाता है। सो आपके लिए यही कहना चाहती हूँ कि अपने लिए जगह बनाना सेल्फिश नहीं बल्कि सस्टेनेबल होता है। तो आज दूसरों का ख्याल रखिए, पर अपनी बैटरी भी रिचार्ज करना मत भूलेगा। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए पैरासूट ट्रैक, जो है खास आपके लिए। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: मलयाली क्रिश्चियन है वो।
1: कैसी?
2: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
3: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
2: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
2: बाय।

इशाना सुरे के साथ मैं फिर से लौट आई हूँ घर में आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। रहा आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। कभी रोड ट्रिप पर जाते हुए आपने नोटिस किया है कि हाईवे के ज्यादा साइन बोर्ड ग्रीन कलर में क्यों होते हैं? आपने भी यही सोचा था कि ये सिर्फ एक डिजाइन है? नहीं, तो एक डिजाइन नहीं है, इसके पीछे एक साइंस छुपी हुई है। तो भाई यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो ग्रीन कलर है सो वो हमारी आंखों को रिलेटिवली कम्फर्टेबल लगता है और लॉन्ग डिस्टेंस रीडिंग में हेल्प कर सकता है। और इसके साथ ही जब ग्रीन बैकग्राउंड पर व्हाइट लेटर्स होते हैं तो इन्फॉर्मेशन दूर से भी ज्यादा क्लियर दिख सकती है, फिर चाहे दिन हो या रात हो। सो इसी वजह से रोड साइन में अलग कलर का अलग पर्पस होता है। अगर बात करें रेड की तो रेड दिखाता है वार्निंग या इम्पोर्टेंट अलर्ट। अगर बात करें येलो की सो ये दिखाता है अटेंशन। अगर बात करें ग्रीन की तो डायरेक्शन और इन्फॉर्मेशन। सो कभी भी अगर आपको रेड येलो ग्रीन दिखे ना तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बोर्ड साइन आपको क्या बताने वाला है। सो देखा आज कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने आपको बताया। कभी आपने सोचा है कि रोज देखने वाली चीजों के पीछे कितनी बड़ी और इंटरेस्टिंग साइंस छुपी हो सकती है? सो अगली बार जब भी रोड ट्रिप पर निकलिए और साइन बोर्ड को सिर्फ पढ़िए मत, ऑब्जर्व भी कीजिएगा। और इसी के साथ ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक बनी रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: जब का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: जब का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

जब बात आती है ना साइबर फ्रॉड की, तो इतने इंटरेस्टिंग केसेस सामने आते हैं कि भाई ऐसे लगता है कि आप किसी वेब सीरीज की कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंसी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो फाइनली एक और स्कैम मार्केट में आ गया और स्कैम ये है, शादी के इनवाइट समझकर अगर आपने कभी फाइल ओपन की ना, सो हो सकता है स्कैमर्स आपका बैंक अकाउंट खाली कर दे। एक्चुअल में एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया बैंगलोर से, बैंगलोर के एक बिजनेसमैन के साथ साइबर फ्रॉड का एक शॉकिंग केस फिर से हो गया, जहां उनको एक व्हाट्सएप पर आई थी एक वेडिंग इनविटेशन की फाइल। उन्होंने उस इनविटेशन को क्लिक किया और क्लिक करते ही ना लाखों का नुकसान करा लिया अपना। बात अगर स्कैम की करें तो पहले ये जानते हैं कि आखिर ये स्कैम हुआ कैसे। सबसे पहले व्हाट्सएप पर वेडिंग इनवाइट उन्हें रिसीव हुआ, एपी के फाइल जब उन्होंने ओपन की तो मालवेयर इंस्टॉल हो गया अपने आप ही, एंड स्कैमर को मिल गया उनके फोन और बैंकिंग डिटेल्स का पूरा एक्सेस। और देखते ही देखते कुछ ही देर में अकाउंट से मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो गए और लाखों का नुकसान हो गया। अब स्कैम के अंदर ना एक चीज थी, वो थी एपी के फाइल। तो आखिर ये एपी के फाइल है क्या? सबसे पहले तो एपी के फाइल एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉलेशन फाइल होती है। अगर इस फाइल की बात करें ना, तो ये अननोन फाइल बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर होता है हिडन सॉफ्टवेयर। अब बात तो कर ली स्कैम की कि आखिर स्कैम हुआ कैसे, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर स्कैम से बचा कैसे जाए। सबसे पहले तो आपको जो भी अननोन फाइल रिसीव होती है, कभी भी उसे ओपन ना करें। साथ ही अगर बात की जाए एप्स की, तो ऐप स्टोर या फिर एक ट्रस्टेड ऐप साइट से ही किसी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इसके साथ ही अगर व्हाट्सएप पर आपको कोई भी सस्पिशियस फाइल मिलती है, उसे जरूर वेरीफाई कीजिए। बैंकिंग अलर्ट्स और परमिशन रेगुलरली चेक करते रहिए, सो दैट कि आपको पता रहे कि आपके फोन के साथ क्या एक्टिविटी हो रही है। और बस यही कहना चाहती हूँ, डिजिटल दुनिया में क्यूरियोसिटी से पहले ना थोड़ी सी सावधानी जरूरी है। एक रॉन्ग क्लिक आपकी पूरी मेहनत की कमाई रिस्क में डाल सकता है। स्टे अलर्ट, स्टे साइबर सेफ और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

राजा की हंसी, और इन सब का कॉम्बो बनकर मिलाता है हमारी एक परफेक्ट फैमिली को। सो अगर बात करें बेस्ट फ्रेंड्स की, आजकल अगर दोस्ती की बात करूँ तो बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन एक टाइम था जहाँ दोस्ती बहुत मुश्किल से हुआ करती थी, खासकर स्कूल टाइम वाली दोस्ती। सो एक ना बहुत अच्छा तरीका है अपने बेस्ट फ्रेंड को पहचानने का, आपकी हर वियर्ड हैबिट जानता हो, वो होता है बेस्ट फ्रेंड। बिना बोले आपका मूड समझ जाए, वो होता है बेस्ट फ्रेंड। जरूरत पड़ने पर सबसे पहले खड़ा होता है आपके लिए, वो होता है दोस्त। और साथ ही हर मेमोरी को स्पेशल बना दे, वो होता है बेस्ट फ्रेंड। सो लाइफ की जर्नी में डेस्टिनेशंस याद रहे या ना रहे, लेकिन दोस्त के साथ किया हुआ सफर हमेशा याद रहता है। तो आज अपने बेस्ट फ्रेंड को एक मैसेज, एक कॉल या फिर एक थैंक यू जरूर बोलिएगा, और उन्हें बताइएगा कि शुक्रिया आपका हमारी जिंदगी में आने के लिए। बिकॉज कहते हैं ना, हर एक दोस्त जरूरी होता है, क्योंकि अच्छे दोस्त लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट होते हैं। सो माय डियर लिसनर, आज ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास अब तक कोई दोस्त नहीं है ना, तो जाइए लोगों से बात कीजिए, अपनी वाइब के अकॉर्डिंग अपना एक बेस्ट फ्रेंड ढूंढिए, मेमोरीज बनाइए, और साथ ही अपनी जिंदगी में ना थोड़ी सी हैप्पीनेस और लेकर आइए। और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी

0: चलता है।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

अपा फेर मिलांगे। बिल्कुल फेर मिलांगे, क्योंकि अभी टाइम हो गया है मेरे यहाँ से जाने का। मंडे टू फ्राइडे आती हूँ सुबह 7 से 10, आपसे करने बहुत सारी बातें, बहुत सारी अपडेट्स लेकर आती हूँ, सोशल स्यापा से लेकर आपके अपने शहर में वेदर से लेकर ट्रैफिक की क्या अपडेट है ये भी आपको बताती हूँ, साथ ही एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती हूँ। तो फिलहाल वक्त हो गया है जाने का, यानी कि बातों का कोटा आज का यहीं खत्म होता है, लेकिन अब कल नहीं, अब सीधा मंडे मिलेंगे सोने एनर्जी के साथ, एंटरटेनमेंट के डबल डोज के साथ और एक नई वाइब के साथ। फिर से मिलूंगी आप सभी से मंडे करने ढेर सारी बातें, तब तक मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। अपना ख्ययाल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद,
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा, सुन।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों वैसे हम बात करते हैं अब मौसम के बारे में, जहाँ इस वक्त 10:07 हो रहे हैं और 31 डिग्री सेल्सियस शहर का तापमान बना हुआ है। बात कीजिए तो आज ही पूरे दिन बादल छाए रहने वाले, बारिश के हैं आसार और आज बारिश आने की संभावनाएं जो है ज्यादा है। बाकी बात की जाए अगर AQI की तो AQI आज जरूर कम होते नजर आए, जो कल 118 तक AQI पहुंचा हुआ था, आज वही 92 पर आ गया है। तो चलिए अच्छी बात है, AQI अगर धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है तो अच्छा है कि शहर की हवा साफ सुथरी हो रही है, जिससे कि पॉल्यूशन कंट्रोल होगा और ये पॉल्यूशन ऐसे ही कंट्रोल रहना चाहिए, जिससे कि शहर की हवा हमेशा के लिए साफ सुथरी और किसी को भी सांस लेने में कोई परेशानी ना।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट रहा हूं लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहां दोस्तों बात करते हैं, जहां आज बात की जाए मैं याद करना चाहूंगा सरदार उधम सिंह जी को, जो भारत के महान क्रांतिकारी थे, जिन्हें शहीद उधम सिंह के नाम से भी जाना जाता। 26 दिसंबर 1899 पंजाब में उनका जन्म हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड से गहरे प्रभावित हुए और उसका बदला लेने का संकल्प लिया। देश की आजादी के लिए उन्होंने बहुत से लोगों को, बहुत से युवाओं को भी इतना जोश भरा उनमें कि आप भी देश की आजादी खातिर आगे आइए। जहां उन्होंने बात की जाए तो 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट माइकल जाइगर को ढेर से बदला लिया, और जहां उसके बाद सरदार उधम सिंह ने इसे जलियांवाला बाग के लिए न्याय का कदम माना। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चला, जहां कुछ वक्त बाद यानी कि 31 जुलाई को लंदन के पेंचोविला जेल में उन्हें फांसी दी गई, जहां उन्हें शहीदी प्राप्त हुई और उन्हें इस देश की खातिर, देश भूमि की खातिर, मातृभूमि की खातिर शहीद हुए कि देश को आजादी मिलेगी। 1974 में उनकी अस्थियों को भारत लाया गया, जहां उनका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया, तब जाकर उन्हें पूर्ण श्रद्धांजलि। तो आज हम उन्हें याद करते हैं सरदार उधम सिंह, जहां उन्होंने अपने इन छोटी सी युवा उम्र में एक सोच जो पूरे भारत देश में चल रही थी कि भारत देश को आजादी दिलानी है, ऐसे शहीद हुए और भी युवाओं को प्रेरित किया कि हमें भी देश की आजादी की खातिर करना है, लड़ना है, और चाहे शहीद ही क्यों ना होना पड़े लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन जो है, उसे आजाद भारत में सांस लेनी है। तो उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। बाकी ऐसी भी चर्चाएं मैं करता रहूंगा, लेकिन उससे पहले एक और गाना।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
2: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

किसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहां दोस्तों बात करते हैं, जहां से कि आप सब जानते हैं रेनी सीजन है, सावन का महीना है, बारिश है, तो रेनी सीजन में प्लांटेशन ड्राइव्स बहुत से एसोसिएशंस, बहुत सी फाउंडेशंस, बहुत से लोग प्लांटेशन ड्राइव्स करते हैं, जो करनी भी चाहिए कि पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, शहर की हवा साफ सुथरी करनी है, ग्रीनरी लानी है, तो पॉल्यूशन उन सबको कंट्रोल करने के लिए प्लांटेशंस बिल्कुल कीजिए। लेकिन लेकिन लेकिन प्लांटेशन ड्राइव्स में ये मत कीजिए कि यार 500, 1000, 2000, 4000 इतने पौधे लगाएं। बेशक हर फैमिली मिलकर एक पौधा लगाए, हर फैमिली मिलकर के अगर एक एक पौधा लगाए, वो उन एक एक पौधे की प्रॉपर टेक केयर की जाए, तो वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, छांव देगा, ऑक्सीजन मिलेगी, ग्रीनरी बढ़ेगी और पॉल्यूशन कंट्रोल भी होगा। हजारों पौधे लगाने की इस रेस में, दौड़ में हम लोग पौधे तो लगा देते हैं, कभी फोटोज क्लिक करके सोशल मीडिया पर भी डाल देते हैं, वाह वाई भी बटोर लेते हैं, लेकिन इन हजारों पौधे जो हैं उतने नहीं पनप पाते। कई बार तो पूरी ड्राइव का एक पौधा भी नहीं पनप पाता, कभी कुछ पनप जाते हैं, अगली दिन तक वापसी गिर जाते हैं, ट्री कार्ड्स नहीं मिल पाते, बहुत सी चीज़ें। इतनी ड्राइव में अगर इतने पौधे जो लगाए गए पिछले इतने सालों में सारे पनपे होते, प्रॉपर तरीके से टेक केयर हुई होती, तो शायद पॉल्यूशन कंट्रोल होता, ग्रीनरी दिख रही होती। हर सीजन में प्लांटेशन ड्राइव की जरूरत पड़ रही है, तो मतलब ड्राइव में लगाए गए पौधे शायद पनप नहीं पा रहे। हर परिवार को एक पौधा लगाना चाहिए और उसकी प्रॉपर टेक केयर करनी चाहिए, तो शहर में इतने सारे परिवार हैं, इतने सारे घर हैं, एक एक पौधे की टेक केयर करेंगे तो बिल्कुल ग्रीनरी होगी, पौधे पेड़ बनेंगे, छांव भी देंगे, गर्मी भी कंट्रोल होगी और पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगा। तो जरा सोचिएगा सब। बाकी ऐसे भी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वार्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वार्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वार्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

इसी कहने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों बात करते हैं काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़ी की कहानी द इंडियन स्टोरी स्लो पॉइजन इन प्रोग्रेस के ट्रेलर और उसकी कोच रूम सोशल ड्रामा थीम को बहुत बेहतरीन प्यार मिलता नजर आया। फिल्म की अगर बात करें कोच रूम ड्रामा है जो कहानी में मिलावट, कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल और पेस्टिसाइड फार्मिंग जैसे मुद्दों पर बेस्ड है। श्रेयस तलपड़ी की बात की जाए तो उनका किरदार अपनी 7-8 साल की बेची के ना रहने के बाद थाने पहुंचता जब कंप्लेंट होती है और वहीं से कहानी शुरू होती है, जहां ट्रेलर में दिखाया गया कि व्यक्तिगत त्रासदी धीरे धीरे फूड एडल्ट्रेशन और पेस्टिसाइड क्राइसिस में बड़े नेशनल इशू जुड़ जाते हैं। कहानी को जैसे ही रिलीज किया गया हिंदी तमिल तेलुगु लैंग्वेज में इसे अच्छा खासा प्यार मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप बताइए कहानी आपको कैसे लगी, एक ऐसा इशू उठा करके कहानी लेकर के आई है जो बिल्कुल रियलिटी और ऐसा होता है कई जगहों पर, तो इसको रोक लगाना बहुत जरूरी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर यानी कि फिल्म चौनकार चौनक। अब आ गया है एक और चर्चा लेकर के। यहाँ दोस्तों हम लोग बात करते हैं एक और बेहतरीन कहानी के बारे में, जहाँ बात की जाए जी कि आप जब जानते हैं कि सिनेमा के गलियारों में बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियाँ कुछ सिल्वर स्क्रीन पर तो कुछ ओटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होते नजर आती। जहाँ मैंने बात करी द इंडियन स्टोरी की, तो यहीं पर एक और स्टोरी है जो सिल्वर स्क्रीन पर नहीं लेकिन हाँ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जरूर मौजूद है। नाम है मुसाफिर कैफे। विक्रम मसी, वेदिका पंचो और महिमा मकवाना की रोमांचक सीरीज मुसाफिर कैफे इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, जहाँ दिव्या प्रकाश दुबे ने इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है चंद्र सुधा प्रीति की कहानी पर केंद्रित। बात करें कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है जिसे हिमांग गौर ने डायरेक्ट किया। कास्ट में के मैन, अर्चना पूरन सिंह, नवीन कस्तूरिया, प्रसन्ना बिष्ट जैसे स्टार्स भी मौजूद हैं। ऐसे कहानी की अगर बात की जाए तो बेहतरीन तरीके से बनाया गया। लोग इस लव स्टोरी को कुछ पसंद भी कर रहे हैं, नाम भी कुछ यूनिक है, तो बिल्कुल आप भी देखना ना भूलिए मुसाफिर कैफे को।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

पर जो मौलिक यहाँ बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सफेद द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द कारगिल वॉर, जिसका ट्रेलर रिलीज किया गया। और ऑपरेशन सफेद सागर की बात की जाए तो एक मिलिट्री ड्रामा के रूप में पेश किया गया 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान की साहसी भूमिका पर आधारित यह कहानी। जहां बात करें कि ट्रेलर में कारगिल के हवाई मोर्चे पर चल रही तैयारी, मिशन प्लानिंग और खतरनाक स्टोरीज की झलक दिखाई गई। आसमान में चली लड़ाई को भी देख सकेंगे इस कहानी में। जहां अगर बात की जाए, कहानी बहुत बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। और रिलीजिंग की बात की जाए तो 7 अगस्त को जो प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जाने वाली, जेमी शेरगिल से लेकर बहुत बड़े बड़े नाम इस कहानी में जुड़े हुए, तो देखते हैं उस टाइम एयरफोर्स का क्या एक जाबाज मिशन था, कितने बेहतरीन तरीके से कारगिल युद्ध में लड़ने के लिए तैयारी थी और कितने बेहतरीन से युद्ध लड़ा, सारी चीज़ें दिखाई जाने वाली। बाकी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
2: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: हेलो, सुन के जाओ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहां हम बात कर रहे हैं आवारापन के सीक्वल के बारे में। ये आवारापन इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 का टाइटल ट्रैक और दूसरा गाना है जो एक दर्द भरा इमोशनल ट्रैक है। गाना अरिजीत सिंह ने गाया, संगीत अमाल मलिक का है और बोल रश्मि विराग ने लिखे। गाना सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता नजर आया रहा है जहां पे लोनलीनेस और हर्ट ब्रेक टोन को हाईलाइट करता है गाना। कहानी इमरान हाशमी और दिशा पायलानी की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर दिख रही है और ये गाना रिलीज होते सारी धमाल मचा रहा है। कुछ नई जोड़ी का इम्पैक्ट तो कुछ इस गाने का। देखते हैं आवारापन का सीक्वल अब क्या धमाल मचाएगा इस गाने की तरह। बाकी चर्चा होती रही उस पर एक और ट्रैक।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यह हम बात करते हैं इस वक्त नितेश तिवारी की मेगा बजट फिल्म रामायण, जिसमें जटायु की आवाज अब अनुपम खेर साहब देने वाले हैं। जी हाँ, कहा जाएगी रणबीर कपूर जहाँ भगवान राम के किरदार में होंगे, साई पल्लवी माँ सीता के किरदार में, यश रावण और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में। अब वेटरन एक्टर अनुपम खेर को जटायु की वॉइस के लिए कन्फर्म किया गया, ये बात जो है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सोशल मीडिया पर सामने आई, जहां पहले जटायु की आवाज अमिताभ बच्चन साहब देने वाले, लेकिन अब फाइनली नाम अनुपम खेर साहब का आया। रामायण को दो पार्ट्स में रिलीज किया जाने वाला है, पहला 2026 की दिवाली पर, दूसरा 2027 की दिवाली पर, जहां इसे हंस जमीर और एआर रहमान फिल्म का संगीत खास तैयार कर रहे हैं, जिससे यह प्रोजेक्ट स्केल और साउंड दोनों के प्लेटफॉर्म पर चूली पैन ग्लोबल होने वाला। इसी के साथ साथ ऐसी और भी चर्चाएं लेकर के आता रहूंगा सिनेमा की गलियारों से, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों बात करते हैं टॉक्सिक फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स के दूसरे गाने मधोश के बारे में, जिसमें उनकी तारा सुतारिया के साथ रोमांटिक केमिस्ट्री पर फोकस किया गया। बात करें मधोश, जो फिल्म का सेकंड सिंगल है, जो पहले रिलीज हाई एनर्जी ट्रैक तबाही के बाद आता है और फिल्म का मूड

एंड चंद से रोमांटिक और सॉफ्ट साइड शिफ्ट करता। गर्म यश के किरदार यानी कि राया और तारा सुतारिया की रबिका के बीच प्रपोजल, प्यार, हंसी मजाक और फिर तकरार तक सब दिखाया गया, जहां की केमिस्ट्री प्लेफुल भी है और इमोशनल भी। यश और तारा की जोड़ी भी लोगों ने पसंद करी, लेकिन गाने में क्यारा और नयन थारा की झलक भी दिखाई जाती है, ताकि फिल्म के मल्टी हीरोइन एंगल की झलक भी मिल सके। कहानी बात करें, अच्छा खासा प्यार मिल रहा है, जहां बस कहानी फुल फ्लैश को क्या कमाई होती है, कितना प्यार मिलेगा वो तो रिलीजिंग के दौरान पता चलेगा। गानों ने धमाल मचा तो कहानी की धमाल मचाएगी ही।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ हम बात करते हैं अब सिनेमा के गलियारे से धमाल के चौथे पार्ट के बारे में। धमाल की बात करते हो अच्छा खासा कमाई करते नजर आई। जहाँ इस कहानी की अगर बात करें धमाल में थी एक तो बड़ी स्टार कास्ट रही, जहाँ स्टार कास्ट के नाम गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन स्टार कास्ट कंप्लीट नहीं होगी। धमाल की अगर बात करें तो यहाँ पे कमाई तो कर रही है, प्यार भी बटोर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर आ रही है सोशल मीडिया पर सबके सामने जिन्होंने कहानी देख ली कि यार कहानी प्यार बटोर रही है लेकिन शायद ज़्यादा लंबी स्टार कास्ट के चक्कर में, स्टार कास्ट तो इकट्ठा कर ली लेकिन शायद स्टोरी को इकट्ठा नहीं कर पाया। स्टोरी में कहीं के बीच में ऐसा लग रहा है यार ये कहाँ से किस पार्ट को जोड़े, ये सीन यहाँ इसका मतलब भी क्या था, शायद कुछ चीज़ें मिसिंग रह गई हैं, स्टोरी के ऊपर अच्छा काम नहीं हो पाया ये फैंस का कहने। बाकी आप बताइए एक आपको कैसी लगी कहानी, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9 6 5 4 8 9 6 8 9 6 पर बाकी चर्चाएं होती रहेंगी। सुपर रिकॉर्ड

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
7: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार बेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। दोस्तों यहाँ वक्त हो चला है सिनेमा के कैलेंडर का और यहाँ अब हम बात करते हैं फिल्मी फ्लेवर में। आज बात करूंगा बॉलीवुड के उस एक्टर्स की जिसने अपनी सिंप्लिसिटी, एलिगेंस और बेहतर परफॉर्मेंस से बहुत कम वक्त में इंडस्ट्री की टॉप एक्टर्स में अपनी जगह बना ली। हर फिल्म के साथ कुछ नया करने की चाहत और हर किरदार में पूरी ईमानदारी, यही कियारा आडवाणी की पहचान। यह आज बर्थडे कियारा आडवाणी का, स्टैंडर्ड ग्रेसफुल एक्ट्रेस का, जिनसे जुड़ी बहुत सी चर्चाएं आज करने वाला कुछ नई इनकी कहानियों के बारे में, कुछ उन किरदारों के बारे में, इन किरदारों से अच्छा खास आप पकड़ बनाती नजर आई। लेकिन सुनाऊंगा उससे पहले कहानी।

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हो जाए
0: खुल।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

उसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। और जहाँ आज हम बात करें कियारा आडवाणी की, जहाँ बोबीस गर्ल आज के दिन की सिनेमा के कैलेंडर में चर्चा हो रही, तो अगर इनके इंपॉर्टेंट किरदारों की बात की जाए, सबसे पहले बात करूंगा MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। यहाँ पर इस लड़की ने यानी कि कियारा ने सबका फोकस इतना ज्यादा जीता था इस कहानी में। बिल्कुल एक नॉर्मल घर से आई लड़की कितने बढ़िया तरीके से अपना किरदार निभाती हुई, यानी कि अपने किरदार के साथ इतनी सच्चाई के साथ वो पूरा परफॉर्म किया कि हर किसी ने कियारा की तारीफ बहुत करी। कुछ तो यूं हुआ कि लोगों ने MS धोनी यानी कि द अनटोल्ड स्टोरी के ऊपर तो फोकस किया, लेकिन उन्होंने कहा कि तारीफें कहानी तो बटोर रही है, लेकिन स्पेशल यहाँ पे तारीफ कियारा की जरूर होनी चाहिए कि अपने किरदार के साथ बहुत सच्चाई के साथ पेश आई हैं। वही बात करेंगे इसके आगे कुछ और बढ़िया कहानियां। कबीर सिंह गुड न्यूज शेरशाह, भूल भुलैया 2 से लेकर सत्य प्रेम की कथा तक हर कहानी में कियारा के किरदार की अगर बात की जाए तो बहुत बढ़िया तरीके से निभाया। और सबसे बड़ी बात कि किरदार अगर बिल्कुल रहा एक न्यूट्रल किरदार, तो वहां पे पेश आने में बहुत बढ़िया तरीके से अपने किरदार को सबके सामने लेकर आई। कुछ कहानी ऐसी कि जॉली नेचर है तो जॉली तरीके से पेश किया। यही असली किरदार जो हम पेश करते हैं, तो यही एक असली आर्टिस्ट है जो अपने किरदार के साथ पूरी सच्चाई के साथ पेश आता है, तभी तारीफें मिलती हैं। बिल्कुल, क्योंकि कियारा आडवाणी ने बहुत ही छोटे से टाइम गैप के अंदर अच्छा खासा प्यार बटोरा। वो प्यार बटोरना सिर्फ ये नहीं था कि पीछे की कुछ मेहनतें थी, मेहनत भी बहुत थी ऑफकोर्स, क्योंकि पीछे बैकएंड से कोई भी ऐसा नहीं था कि उनकी फैमिली से बॉलीवुड इंडस्ट्री में रहा हो या फिर टीवी इंडस्ट्री में रहा हो। बिल्कुल नेचुरली एक इंडस्ट्री में कदम रखना और एकदम से इतना प्यार बटोरना, वो सिर्फ तभी हो सकता है या तो आपने मेहनत बहुत ज़्यादा करी है, और अपने किरदारों के साथ जब भी आपने कोई भी कैरेक्टर देखा तो पहले किरदार को अपने अंदर ढाल लिया कि यार मुझे ऐसा नहीं करना कि मैं एक्ट कर रही हूँ, मुझे बेसिकली उस किरदार को ही स्टेज के ऊपर उतारना है जो लोग देखना चाहते हैं या फिर स्क्रिप्ट डिमांड कर रही है। तो कियारा को इसलिए प्यार मिलता हुआ हमेशा नजर आया। तो आप जरूर बताइएगा कियारा आडवाणी का कौन सा किरदार आपको बहुत ज्यादा पसंद आया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9654896896 पर। और हमेशा की तरह जिसका भी नाम आएगा वो आज नहीं बताऊंगा, वो अगले दिन बिल्कुल बताऊंगा कि किसका आंसर आया और कौन सा किरदार सबसे दिल जीतता नजर आया इंडस्ट्री में कियारा आडवाणी का। बाकी ऐसी और भी चर्चाएं लेकर के आता रहूंगा सिनेमा के गलियारे से, सिनेमा के पिटारे से, कुछ सिल्वर स्क्रीन की तो कुछ OTT प्लेटफॉर्म की। लेकिन आज नहीं, अब आपसे मुलाकात होगी मंडे के दिन, सेम टाइम सेम जगह करूंगा बहुत सी बातें। तब तक के लिए चलता हूं और ये खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ। जब सब
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

क्या आप जानते हो, एक वक्त था जब इंडिया में बैडमिंटन सिर्फ एक इंडोर गेम माना जाता था, और एक लड़की थी जो इस गेम को वर्ल्ड मैप पर ले जाने वाली थी। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और ये कहानी है साइना नेहवाल की, एक ऐसी लड़की जिसने ना सिर्फ मेडल्स जीते बल्कि सोच बदल दी। हरियाणा के हिसार में पैदा हुई साइना का बचपन सिंपल था, ना कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, ना कोई गॉडफादर, बस एक चीज थी और वो थी डिसिप्लिन। जब फैमिली हैदराबाद शिफ्ट हुई तब साइना सिर्फ 8 साल की थी, स्विमिंग सीखने गई और वहां एक बैडमिंटन कोर्ट ने उसका हाथ थाम लिया। शायद उस दिन साइना को भी नहीं पता था कि ये रैकेट एक दिन देश का सर ऊंचा करेगा। रोज स्कूल, फिर ट्रेनिंग, बाकी बच्चे घर जाते थे, साइना पसीने के साथ अपना फ्यूचर लिख रही थी। लोग कहते थे लड़की है, ज्यादा दिन नहीं खेलेगी, पर साइना चुप थी क्योंकि उसका जवाब कोर्ट पर लिखा जा रहा था। और आगे कैसे उनकी सपनों की ट्रेनिंग बढ़ती गई करेंगे इसके बारे में बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

चैंपियंस बनते नहीं, चैंपियंस तैयार किए जाते हैं। पुलेला गोपीचंद एकेडमी, यहाँ सिर्फ टैलेंट काम नहीं आता, यहाँ मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट होती है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आज हम लोग कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं साइना नेहवाल की। सुबह 4 बजे उठना, फिजियो, ड्रिल्स, प्रैक्टिस मैचेस और फिर वही रूटीन रोज। साइना कई बार थकी थी, कई बार रोई भी, इंजरीज ने बॉडी को तोड़ दिया, पर हौसला नहीं टूटा। जब पूरी दुनिया सो रही होती थी, तब चैंपियंस अपने सपनों के साथ झगड़ते हैं, जागते हैं। पैसे कम थे, प्रेशर ज्यादा था, पर साइना के पेरेंट्स ने उनका सपना कभी कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने सीखा कि हार सिर्फ एक रिजल्ट होता है, एंड नहीं। और फिर एक दिन उनका नाम इंटरनेशनल कोर्ट्स पर गूंजने लगा, और फिर कैसे पूरी दुनिया ने इंडिया की इस बेटी को देखा, करेंगे इसके बारे में बात। फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए एक गाना। वापस आकर बात करने वाले हम लोग साइना नेहवाल की आगे की जर्नी के बारे में। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें। तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

स्टार्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

कड़ी प्रैक्टिस और कड़ी मेहनत हमेशा एक इंसान को चैंपियन बना देती है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं साइना नेहवाल की। साल 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, स्टेज बड़ा था, प्रेशर और भी बड़ा। और ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये इंडिया के लिए एक अनाउंसमेंट था। और फिर साइना नेहवाल जीत गई ब्रॉन्ज मेडल। पूरा इंडिया हैरान था, बैडमिंटन हिस्ट्री बन चुकी थी। साइना सिर्फ मेडल नहीं जीत रही थी, वो हर उस लड़की का भरोसा जीत रही थी जो चुपचाप सपने देखती है। इंटरनेशनल टाइटल्स आने लगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया और एक बात पूरी तरह से क्लियर हो गई कि साइना सिर्फ अभी शुरू हुई है। जब एक लड़की जीतती है ना, तो सिर्फ एक नाम नहीं जीतता, पूरी सोच जीत जाती है। तो ऐसे ही साइना नेहवाल धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ती गई और वर्ल्ड नंबर वन वो कैसे बनी, करेंगे इसके बारे में बात मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना, आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे क्लास तो पीती जा सुन।

दुनिया में हर एथलीट अपने आप को नंबर वन पर जरूर देखना चाहता है और इसके लिए वो रोज जी तोड़ मेहनत करता है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। साल था 2015, वो दिन जब साइना नेहवाल बनी वर्ल्ड नंबर वन। और इस नंबर के पीछे सिर्फ मैचेस नहीं थे, इसके पीछे थी सालों की मेहनत और सालों का सैक्रिफाइस। पर सक्सेस के साथ आई स्ट्रगल्स, इंजरीज, फॉर्म मिस हुआ, फॉर्म लॉस हो गया, लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू हो गया और लोग बोले अब साइना पहली जैसी नहीं रही। पर चैंपियन वही होता है जो आवाजों से नहीं अपनी मेहनत से बोलता है। साइना ने कड़ी मेहनत करी, साइना ने कमबैक किया, गिरी फिर उठी और हर बार खुद को याद दिलाया कि मैं यहां तक आई हूं तो आगे भी जा सकती हूं। और ऐसे ही साइना नेहवाल बन गई एक लेजेंड। और आगे उनका रास्ता कैसे बनता चला गया करेंगे इसके बारे में बात, मगर उससे पहले आप सभी के लिए ये गाना। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

इंडिया में जब भी एक एथलीट खेलने जाता है तो कोई मीडिया कवरेजेस नहीं मिलती, और जैसे ही वो कोई मेडल ले आए तो सारे मीडिया हाउसेस उसके आगे पीछे जाते हैं, और फिर उसके बाद आता है सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सबसे लाइफ का डिफिकल्ट फेज, और उसे कहते हैं क्रिटिसिज्म वाला फेज। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड हर एक एथलीट की लाइफ में एक पॉइंट आता है जब वो रिटायरमेंट ले लेता है, और आज हम लोग बात कर रहे हैं कामयाबी की उड़ान में साइना नेहवाल की। और आज शायद साइना कोर्ट पर रोज ना दिखे, पर हर कोर्ट उनकी कहानी जरूर दिखाती है। आज जब भी कोई लड़की रैकेट उठाती है उसमें साइना का रिफ्लेक्शन होता है। साइना ने सिखाया बैकग्राउंड छोटा हो सकता है लेकिन सपना नहीं। मेडल्स शेल्फ पर रखे जाते हैं पर इंस्पिरेशन दिल में रहती है। और साइना नेहवाल ने सिर्फ बैडमिंटन नहीं खेला, उन्होंने एक जनरेशन को खेलना सिखा दिया, और इसी के साथ साथ उन्होंने साल 2026 में रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। वर्ल्ड नंबर वन क्रिकेटर विराट कोहली हो या फिर हमारे द लेजेंड सचिन तेंदुलकर, सब ने उनकी यात्रा के लिए थैंक्स बोला। सब ने थैंक्स बोला कि उन्होंने इंडिया को एक अलग पहचान दी और इंडिया को बैडमिंटन के क्षेत्र में आगे पहुंचाया। तो थैंक यू सो मच साइना नेहवाल फ्रॉम द होल टीम ऑफ रेडियो महारानी। एंड इसी के साथ साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आप सभी से फिर से मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 8। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हट

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

हाय, कैसे हैं आप सब। मैं लेकर आ गई हूँ शो बिजनेस अनप्लग्ड। हाँ, वही शो जिसमें हम आपको ले जाते हैं उन लोगों की दुनिया में जिन्होंने सिर्फ बिजनेस ही नहीं किया बल्कि हिस्ट्री भी बनाई। मैं हूँ गीत। सो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, और ट्रस्ट मी, ये कहानी थोड़ी सी अलग है, थोड़ी माइंड ब्लोइंग भी। वो स्टोरी जिसे सुनकर आपको लगेगा वाह, ये सच में हुआ था। इमेजिन करो, एक छोटी सी शुरुआत, कुछ आइडियाज, कुछ प्लान्स और बहुत सारा हसल, स्लीपलेस नाइट, फेलियर्स, एक्सपेरिमेंट, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वही छोटी शुरुआत बन जाती है कुछ ऐसी चीज जिसे देखकर पूरा वर्ल्ड कहे ये पॉसिबल कैसे हुआ। और ये स्टोरी सिर्फ सक्सेस की ही नहीं और सिर्फ स्ट्रगल की ही नहीं, यहाँ है विजन, डेडिकेशन, पैशन और वो काइंड ऑफ रिस्क टेकिंग जो आप सिर्फ लेजेंड्स में ही देखते हैं। थिंक अबाउट इट, नंबर्स, रिएक्ट, इम्पैक्ट और वो काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस जो दुनिया में किसी ने क्रिएट किया। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है, शुरुआत इतनी हम्बल थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लेवल कहाँ तक जाएगा। और आप सोचो क्या होता है उस इंसान के साथ जिसने सब कुछ शुरू किया बस एक आइडिया से और फिर स्लोली होल वर्ल्ड स्टेज पर पहुंच गया। तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। मैं आज अनप्लग करने वाली हूँ कुछ सीक्रेट्स, हाई एंड लोज और वो सारे मोमेंट जो आपको रोक कर रख देंगे। ये कहानी है हसल की, विजन की और उस डेडिकेशन की जिसे सुनकर आपको लगेगा ये रियल में कोई कर सकता है। तो लिसनर्स, आर यू रेडी, क्योंकि आगे होने वाला है बहुत कुछ और ट्रस्ट मी आप इसे भूल नहीं पाएंगे। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आज बात करने वाली हूँ उस इंसान की जिसने अपने विजन, डेडिकेशन और पैशन से इंडिया में टेक की दुनिया को रिडिफाइन किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शिव नादर की। शिव नादर जो सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं बल्कि इंडिया के सबसे बड़े विजनियर्स और फिलैंथ्रोपिस्ट में से एक है, जिन्होंने 1976 में HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड की शुरुआत की बस अपने कुछ दोस्तों के साथ एक छोटे से गैराज में। उस टाइम इंडिया में कोई भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर नहीं रहा था और वही छोटी शुरुआत धीरे धीरे बन गई इंडिया के टेक रेवोल्यूशन की पहचान। अब कंपनीज की बात करें, HCL जो आज ग्लोबल टेक जायंट बन चुका है, सिर्फ सॉफ्टवेयर या IT सर्विस नहीं करता बल्कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D, कंसल्टिंग और इमर्जिंग टेक प्रोजेक्ट्स में भी काम करता है। HCL का टर्नओवर आज $12.8 बिलियन के आसपास है और 60 देशों में फैली हुई कंपनीज में 2,25,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। लेकिन शिव नादर सिर्फ HCL के लिए नहीं जाने जाते, इनके पास है मल्टीपल वेंचर्स, टेक इनिशिएटिव्स जो ग्लोबली ऑपरेट करते हैं और साथ ही इनका फिलैंथ्रोपिक वर्क भी इक्वली बड़ा है। शिव नादर फाउंडेशन ने अब तक सीधे 36,000 बच्चों की जिंदगी बदली है और इस फाउंडेशन में इन्होंने $1.1 बिलियन का एंडोमेंट दिया है। सो इमेजिन करो, एक आदमी जो छोटे से शहर से आया, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से गैराज में कंप्यूटर बनाने की कोशिश करता रहा और आज इनके पास है वर्ल्ड क्लास टेक एम्पायर, ग्लोबल रीच और समाज के लिए करोड़ों की फिलैंथ्रोपी। लेकिन ये कहानी सिर्फ नंबर्स और कंपनीज की नहीं है, ये कहानी है विजन, स्ट्रगल, स्मार्ट डिसीजन और रिलेंटलेस डेडिकेशन की। शिव नादर ने साबित किया कि स्मॉल बिगनिंग भी ग्लोबल इम्पैक्ट में बदल सकती है बशर्ते आपके पास पेशेंस और विजन हो। तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि मैं डाइव करने वाली हूँ इनके अर्ली स्ट्रगल्स, गैराज डेज और वो स्ट्रेटेजी जो इन्हें इंडिया के टॉप लीडर्स में से एक बनाती है। और ट्रस्ट मी, ये सब सुनने के बाद आपको लगेगा कि रियल हसल क्या होता है। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

अगेन वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड. और जिन लोगों ने अभी सुनना मुझे शुरू किया है, मैं बता देती हूँ, मैं बात कर रही हूँ शिव नादर के बारे में. और अब मैं जाने वाली हूँ उस पार्ट में जो शायद सबसे इंटरेस्टिंग था, शिव नादर के अर्ली डेज और चाइल्डहुड. तो पिक्चर करो, साल 1945, तमिलनाडु का एक छोटा सा शहर. यहाँ पैदा हुआ एक बच्चा जिसका नाम था शिव नादर. बिल्कुल साधारण परिवार में, कोई बड़ा प्रिविलेज नहीं, कोई फैंसी अपब्रिंगिंग नहीं, लेकिन बचपन से ही इनके अंदर क्यूरियोसिटी और क्यूरियोसिटी का लेवल कुछ अलग था. शिव नादर को मैथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में गहरी रुचि थी. स्कूल की किताबें बस पढ़ने की चीज नहीं थी इनके लिए, बल्कि समझने की, एक्सप्लोर करने की जगह थी. ये हमेशा एक्सपेरिमेंट करते, छोटे छोटे गैजेट्स को खोलते और समझने की कोशिश करते कि ये काम कैसे करता है. शिवनादर ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत

ट्रीज और स्मॉल एक्सपेरिमेंट ने धीरे धीरे इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जो आगे इनके एंटरप्रेन्योर जर्नी में काम आया। तो यही वर्ल्डली डेज की कहानी है, क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंटिंग, लर्निंग और डेडिकेशन। ये वो फाउंडेशन था जिस पर इन्होंने अपने विजन और पैशन को बिल्ड किया और आगे चलकर इंडिया की टेक हिस्ट्री बदल दी। और ट्रस्ट में अभी ये शुरुआत है, हम आगे जाने वाले हैं इनके कॉलेज के डेज, दोस्तों के साथ एक्सपेरिमेंट और वो फर्स्ट आइडिया जो धीरे धीरे HCL की शुरुआत बनी। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये कहानी अभी और इंटरेस्टिंग होने वाली है।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही हूँ शिव नादर के बारे में। पिक्चर दिस, एक छोटे से रूम में कुछ पैशनेट लोग बैठे हैं, कोई फैंसी ऑफिस नहीं, कोई कॉर्पोरेट लग्जरी नहीं, बस आइडियाज, एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारी मेहनत। यही वो प्लेस था जहां शिव नादर और उनके दोस्तों ने शुरू किया HCL, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। 1976 का टाइम था, इंडिया में कंप्यूटर्स बनाना अभी बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। इम्पोर्टेड मशीन्स और हाई टेक सिस्टम्स के बीच शिव नादर और उनकी टीम ने डिसाइड किया क्यों ना खुद ही टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए। और बस यही छोटी सी शुरुआत, वही छोटा गैरेज धीरे धीरे बन गई इंडिया के टेक रेवोल्यूशन की पहचान। सो इन्होंने शुरू किया कैलकुलेटर्स, माइक्रोप्रोसेसर्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स पर काम करना। लो बजट सेटअप, स्लीपलेस नाइट्स, ट्रायल एंड एरर, और बिलीव मी फेलियर्स इतने कॉमन थे कि हर दिन कुछ नया सीखना था। लेकिन शिव नादर का फोकस क्लियर था, विजन। अर्ली चैलेंजेस, ओह बहुत सारे। मार्केट में इम्पोर्टेड टेक का डोमिनेंस और क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंस हासिल करना। लेकिन शिव नादर ने स्ट्रेटेजी, पेशेंस और कंसिस्टेंसी से सब हैंडल किया। इन्होंने छोटे क्लाइंट से शुरुआत की, ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ाए और HCL को स्ट्रक्चर कंपनी में कन्वर्ट किया। तो एक स्मॉल गैराज से स्टार्ट हुई कंपनी जो धीरे धीरे इंडिया का पहला इंडिजीनियस कंप्यूटर्स बनाने वाली कंपनी बन गई। फर्स्ट प्रोडक्ट, स्मॉल स्केल डिलीवरीज, क्वालिटी चेक्स, हर स्टेप में हसल और डेडिकेशन। और ये हसल सिर्फ टेक तक सीमित नहीं रहा, शिवनादर ने हमेशा लॉन्ग टर्म विजन सोचा, शॉर्टकट नहीं दिए, क्वालिटी, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी को प्रायोरिटी दी। और यही अप्रोच ने HCL को बनाकर ग्लोबल टेक जॉइंट में कन्वर्ट किया। ये वो कहानी, गैराज डेज, एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट प्रोजेक्ट्स और अर्ली हसल जिसने HCL को इंडिया और ग्लोबली नाम दिलाया। स्टे ट्यून क्योंकि अभी आगे है उन डिसीजन और स्ट्रेटेजीज की स्टोरी जिसने शिव नादर को ग्लोबल इम्पैक्ट और लेजेंडरी स्टेटस तक पहुंचाया।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

Once again, welcome back. You are listening to Business Unplugged. हम बात कर रहे हैं शिव नादर के बारे में. वही स्मॉल गैराज, वही एक्सपेरिमेंट्स और वही पैशनेट हसल. धीरे धीरे स्टार्ट हुआ एक ट्रांसफॉर्मेशन. शिव नादर और उनकी टीम के एफर्ट्स ने SCL को ग्रेजुअली इंडिया की टेक इंडस्ट्री में स्टैंड आउट प्लेयर बना दिया. फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, वो कॉन्फिडेंस और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने वाले मोमेंट्स थे. हर प्रोजेक्ट ने इन्हें थोड़ा बड़ा विजन दिया और स्लोली वो सोचने लगे, क्यों ना सिर्फ इंडिया में सिर्फ कंप्यूटर ही बने बल्कि कंप्लीट टेक इकोसिस्टम डेवलप हो. और तभी शिव नादर ने अडॉप्ट किया कि स्ट्रेटजी और प्लानिंग का वो लेवल जिसने SCL को स्ट्रक्चर ग्रोथ, प्रोसेस ड्राइवन ऑपरेशंस और ग्लोबल एक्सपेंशन की दिशा में ले जाना शुरू किया. प्रोजेक्ट्स बड़े, एम्प्लॉयज बड़े और धीरे धीरे कंपनी का फुटप्रिंट 60 कंट्रीज तक फैल गया. थिंक अबाउट इट, जो शुरुआत थे सिर्फ कैलकुलेटर्स और माइक्रो प्रोसेसर से, वो अब सॉफ्टवेयर सर्विस, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D और कंसल्टिंग में ग्लोबल लीडर बन चुके थे. टर्नओवर लगभग $12.8 billion, एम्प्लॉयज 2,25,000 प्लस ग्लोबली. बट शिव नादर के लिए सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं थी, इनके विजन में हमेशा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट प्लस इनोवेशन प्लस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल थी. और इसी वजह से इन्होंने शिव नादर फाउंडेशन की शुरुआत की, जो एडुकेशन और सोसाइटी को एम्पावर कर रही है. अब तक 36,000 बच्चों की लाइफ डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एंडोमेंट उनके पास है. तो दोस्तों, ये जर्नी है फर्स्ट बैग सक्सेस स्केलिंग स्ट्रेटजीज, ग्लोबल एक्सपेंशन और विजन ड्राइव ग्रोथ की. एक छोटा सा गैराज, स्लीपलेस नाइट, फेलियर्स, एक्सपेरिमेंट और अब एक ग्लोबल टेक एम्पायर और फिलैंथ्रोपिक लेगेसी. लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई. शिव नादर की स्टोरी हमें सिर्फ बिजनेस नहीं सिखाती बल्कि ये बताती है कि हम्बल बिगिनिंग्स प्लस रिलेंटलेस हसल प्लस विजन मिलकर किसी इंसान को लेजेंडरी बना सकते हैं. तो ये कहानी है एक विजन की, एक सोच की और उस भरोसे की, जो छोटे से आइडिया से शुरू होकर पूरी दुनिया तक पहुंचा. मैं हूं गीत और आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड. मैं मिलूंगी आपसे अब कल, जहां ढेर सारी बातें करेंगे एक नए बिजनेस टाइकून के साथ. और आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके. कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग.

0: आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: जानता हक से मैं दाम मेरा यो यो।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, कितना भी कर ले घर का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।
3: रेडियो महारानी पर एंटरटेनमेंट का डोज अभी बाकी है मेरे।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

सिलबट्टा कोई नया जुगाड़ नहीं, इसका इतिहास 5000 साल पुराना माना जाता है। रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर आप सुन रहे हैं कल्चर गारवा, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजी, और आज बात कर रहे हैं सिलबट्टे के बारे में। तो आइए चलिए जानते हैं इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है। हिस्ट्री की माने तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स में स्टोन ग्रैनाइट्स मिले हैं जो सिलबट्टा के ही पूर्वज थे। सोचिए जब हड़प्पा और मोहनजोदारो बस रहे थे तब मसाले भी सिलबट्टा पर ही पिस रहे थे। कहा है कि शहर बदल गए घर बदल गए पर स्वाद ना अपना रास्ता बदल पाया। बस इसीलिए सिलबट्टा और स्वाद का साइंस भी कुछ ऐसा ही है। अब जरा साइंस समझिए, मिक्सर ग्राइंडर बीट से मसाला काट देता है पर सिलबट्टा उसे क्रश करता है, इसीलिए ऑयल्स रिलीज होते हैं, टेक्सचर जिंदा रहता है, टेस्ट गहरा होता है। इसलिए कहा जाता है सिलबट्टे वाली चटनी सिर्फ तीखी नहीं होती, यादगार भी होती है। वो कहा है कि स्वाद जब टूट कर नहीं पिघल कर निकले तो जुबान उसे भूल नहीं पाती। सिलबट्टे के बारे में और भी अनोखी बातें जानेंगे लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

सिलबट्टे की खासियत ये भी है कि ये सिर्फ किचन का टूल नहीं था, ये घर की रिदम थी। सुबह मसाला पीसने की आवाज से घर जागता था। सिलबट्टे पर बैठकर सिर्फ चटनी नहीं बनती थी, बातें भी बनती थी, राज निकलते थे और रिश्ते में स्वाद आता था। वो कहा है कि सिलबट्टा घिस रहा होता था और जिंदगी धीरे धीरे पक रही होती थी। फिर ऐसा क्या हुआ, क्यों सिलबट्टा पीछे छूट गया? आज के दौर की बात करें तो बहुत सारी चीजें बदली हैं। फिर आई बिजली और बिजली के साथ आई जल्दी। मिक्सर ग्राइंडर ने टाइम बचाया पर शायद कुछ और चीजें भी ले गया, वही वक्त जो स्वाद बनाता था। वो कहा है कि हमने सुविधा को गले लगाया और परंपरा को धीरे से छोड़ दिया। वापस जाने के बाद अब फिर लौट रहा है सिलबट्टा हम सबकी जिंदगी में। आज की बात माने तो जिस सिलबट्टे को हमने पुराना कह दिया, वही आज ऑर्गेनिक ऑथेंटिक हेरिटेज बन गया। 5-star रेस्टोरेंट्स में सिलबट्टा चटनी प्रीमियम डिश बन चुकी है। वो कहा है कि जो चीज कभी रोजमर्रा थी आज वही खास बन गई। सिलबट्टे के साथ सिर्फ किचन की यादें नहीं, इमोशंस भी जुड़े हैं। बात करेंगे वापस आकर इन इमोशंस के बारे में। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

सिलबट्टा सिर्फ पत्थर का टुकड़ा नहीं, ये तो दिल का टुकड़ा है। सिलबट्टा और इमोशंस का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। सिलबट्टा देखते ही किसी को माँ याद आती है, किसी को नानी, किसी को वो किचन जहाँ सब साथ होते थे। वो कहा है कि हाथ थक जाते थे पर दिल कभी नहीं। तो दोस्तों, सिलबट्टा सिर्फ एक पत्थर नहीं, ये याद है, ये पेशेंस है, ये स्वाद का सबसे ईमानदार तरीका है। अगली बार जब चटनी बनाएं, एक पल रुककर सोचिए, क्या हम सिर्फ खाना बना रहे हैं या एक कहानी भी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूँ आपकी आरजे अंजी। आज लेकर आई थी कल्चर कारवा में सिलबट्टे की कहानी। कल फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए जायके के साथ, एक नए इमोशन के साथ। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर। दिस इज योर आरजे अंजी साइनिंग ऑफ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
4: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
3: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: हे भगवान, ये बारिश कब आएगी, ये मेरा सवाल है. और ये सवाल मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों का होगा, है कि नहीं? आप लोग कैसे हो पहले तो ये बता दो. देखो फ्राइडे है, मस्ती होगी आज, खूब सारी मस्ती होगी. आप लोगों के प्लान्स तो होंगे ही होंगे. जिनकी सैटरडे संडे छुट्टी है, मजे करो, एंजॉय करो अच्छे से. जीने का हर दिन ऐसे जियो, जीवन का हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो. मगर ये शुरुआत है मेरे शो की. तो मैं एक गाना चलाता हूँ, बस मैं यूं गया और यूं आया.

ओ जी अनस्टॉपेबल तो मैं भी हूँ, अनस्टॉपेबल अब मैं रहूँगा 3 घंटों तक। खूब सारे गाने बजने वाले हैं और वैसे भी आज तो फ्राइडे है ब्रो। क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? कोई ना कोई प्लान्स तो ज़रूर होंगे। और इसी के साथ साथ नई नई फिल्में आ रखी है, स्पाइडरमैन, मतलब ये फिल्म मेरे को देखने को इतना मन है मगर देख नहीं पा रहा हूँ मैं, मतलब जाना चाहता हूँ, कोई साथ में चलने को है नहीं। तो अगर आप लोगों को मेरे साथ चलना है मूवी देखने तो एक नंबर पर कॉल कर सकते हो, 9654896896। इस पर आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा रेडियो महारानी के इंस्टा हैंडल पर आइए, वहाँ पर भी आके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आरजे गौरव बहुत ईजिली मिल जाएगा। अरे ढूंढने पर तो भगवान मिल जाते हैं, फिर ये नाचीज क्या है गौरव, मिल जाएगा बहुत ईजिली, आप लोग ट्राई कीजिए। और इसी के साथ साथ नया एक सीरीज आई है आदर्श ग्राम विद्यालय, देखिए आप लोगों ने नहीं देखी क्या? चलिए इस पर करेंगे बात। और हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, देखो फरीदाबाद में बारिश के साथ एक चीज़ हुई है, वो ये हुई है कि गड्ढे बढ़ गए हैं। और आप बोल रहे हो कि बारिश हुई कहाँ है, हाँ मैं मानता हूँ मंगलवार को हुई थी लास्ट, उसके बाद फ्राइडे आ गया है, बारिश के कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि कल 90% चांसेस है बारिश के, मगर कल क्या होगा ये किसने देखा, और हम बस इंतज़ार करेंगे कल का। और इसी के साथ साथ आज आखिरी तारीख है ITR भरने की फॉर एवरी इंडिविजुअल, तो आप लोग ITR भर चुके हो तो वेल एंड गुड, नहीं भर हो तो भर लो जल्दी से। और इसके अलावा कुछ भी बात करनी है फरीदाबाद से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं, नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना चला रहा हूँ, बस मैं यूँ गया और यूँ आया।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है और वो ये है कि मेरा नंबर कहाँ से इनके पास चला जाता है जो लोग मुझे दिन भर कॉल करते हैं। सर आपके लिए लोन है, सर हेल्थ चेकअप करवाएंगे, सर ये करवाएंगे, सर वो करवाएंगे, सर घर खरीदना चाहते हैं। अरे घर तो खरीदना चाहता हूँ, पैसे आप दोगे क्या? स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ कौन, द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और आखिरी तारीख आज 31 तारीख, आखिरी दिन इस महीने का। और मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि हम सबके चेहरे पे ना स्माइल आ जानी चाहिए आज, क्योंकि नया महीना शुरू होने वाला है। सैलरी आएगी अब सबकी, किसी की 1 को आ जाती है, किसी की 5 को आ जाती है, किसी की 10 को आती है, किसी किसी की 15 को भी आती है मानता हूँ। तो चलिए आप लोग ना नए महीने के लिए रेडी रहिए। और मैं एक और बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा, वो ये कि देखो कभी भी ना उदास नहीं रहना है लाइफ में, बिल्कुल भी उदास नहीं रहना है। क्योंकि देखो हमारे लिए, मतलब हम लोगों को पूछने के लिए कोई ना कोई बैठा है, और वो है ये फ़ोन कॉल करने वाले। मतलब आपको कभी भी लगे ना कि आप अकेले हो, आपसे कोई बात नहीं करता है, तो आपके पास एक फ़ोन आ जाएगा उसी टाइम जो ट्रू कॉलर बताएगा कि स्पैम कॉल है, बट आप उनसे बात कर सकते हो। आपको कभी भी अकेला फील नहीं होने देंगे, वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि वो आपके लिए ही बैठे हैं। फिर बस फ़ोन आता है, सर कैसे हैं आप, मैं बोलता हूँ एकदम बढ़िया। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई नोन फ़ोन कर रहा है, या फिर मैं किसी को नंबर देकर आया हूँ वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं। फिर इतने में आता है, सर आपके लिए एक स्कीम आई है, सुनने में इंटरेस्टेड हैं? फिर मैं बोलता हूँ चलो खाली बैठा हूँ इस टाइम, सुन लेते हैं। और बता रहा हूँ ये जो स्पैम कॉलर्स है ना, ये इतना परेशान कर देते हैं। अब इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए? कितने नंबर डिलीट कर दोगे, कितने नंबर ब्लॉक कर दोगे, नहीं कर पाओगे हर चीज़। तो इसका समाधान क्या है, करेंगे इसके बारे में बात। मगर उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा आई एम डन, मतलब गाने का नाम है, सुनिए इस गाने को, दिल में अब कोई ख्याल ही नहीं है। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर मान बानू की आवाज़ में आप सभी के लिए।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा।

जैसे ही मैंने आप लोगों को बोला कि स्पैम कॉल्स आते हैं, तो उतने देर में मेरे पास भी एक स्पैम कॉल आ गया। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आप लोगों के पास बहुत बार कॉल्स आती होगी अननोन नंबर से, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था, जो आपको बार बार कुछ ना कुछ स्कीम भेजते हैं। कभी बोलते हैं हेल्थ चेकअप करा लो, कभी बोलते हैं घर खरीद लो, सर आपके लिए स्कीम है, आप इधर इन्वेस्ट कर लीजिए पैसा। नहीं करना है हमें, जब करना होगा हम खुद से कॉल कर लेंगे। और आपको पता है इंटरेस्टिंग बात, इंडिया में लोन के लिए फोन कॉल उसी को आता है जिसको लोन की जरूरत नहीं होती। जिसको लोन की जरूरत होती है उस पर कहाँ कॉल करते हैं लोग, नहीं करते ना। तो चलिए इसके बारे में आप लोगों से बात कर रहा था। तो एक बहुत ही अच्छा ऐप है जो सरकार ने निकाला है, उसे कहते हैं TRAI ऐप, ट्राई ऐप। तो ट्राई ऐप क्या करता है, आपके पास जितने भी स्पैम कॉल्स आ रहे हैं आप उनकी डिटेल्स इस ऐप में डाल दीजिए। कितने नंबर ब्लॉक कर लोगे, नहीं कर पाओगे। तो ट्राई ऐप में आप जाके जाइए, उसमें जाके आप DND डाल दीजिए, मतलब आपके पास जितने भी अनसॉलिसाइटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन कॉल्स आती हैं, तो टेलीमार्केटिंग कॉल्स जिसे कहते हैं या फिर टेलीमार्केटिंग SMS जिसे कहते हैं, तो वो आने आपके पास बंद हो जाएंगे। अब TRAI क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये ऑफिशियल गवर्नमेंट का है, तो ये क्या करेगा, आपके फ़ोन पे जो भी कॉल आएगा उसको पहले से ही ब्लॉक कर देगा। और इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप लोग एप्पल फ़ोन चलाते हैं तो आप एप्पल से भी एप्पल स्टोर पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि देखो, जब भी आपके पास एक कॉल्स आती है ना, तो इनको अवॉइड करोगे तो ही ज़्यादा बेटर है। और अगर आपके पास कॉल आती है वो आप बार बार मान नहीं रहे, तो उनको फ़ोन कर उठाती है, बोलिएगा कि मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, ख़त्म। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए हरियाणवी प्यारा वाला गाना बैरन मैशअप, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

आज तो यही वाला गाना बजेगा शाम को पार्टी में। क्या कह रहे हो, शाम हो गई है क्या? अभी 5:45 हो रहे हैं, अभी कहाँ शाम हुई, गर्मियों के दिन चल रहे हैं, अभी से अंधेरा नहीं होगा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड बारिश का माहौल कुछ ऐसा है कि कल जहाँ चांसेस दिखा रहा था 90%, वो घट के हो गया 60%। अब बस भगवान ना करे कि कल सुबह मैं उठूँ और फिर उसके बाद ये 20% रह जाए। नहीं होना चाहिए ना ऐसा, क्योंकि बारिश होनी चाहिए। दिल्ली NCR में बारिश हो ही कहाँ रही है, इतना सूखा मानसून मैंने तो नहीं देखा, आप लोगों ने देखा तो बता दीजिएगा। चलिए इसी के साथ साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी पर। अभी मैं जो ये बात कर रहा हूँ वो ये है कि मौसम विभाग का पहले कहना था कि जी शनिवार और रविवार आप लोगों को खूब सारी बारिश देखने को मिलेगी, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि एल नीनो इफेक्ट जिसे कहा जा रहा था, पहले भी मैं बोल रहा था, बहुत टाइम से बोलता आ रहा था मैं कि इस बार मानसून वीक है, ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा था, एक्चुअली IMD इंडियन मेट डिपार्टमेंट ने बोला था। अब मेट का फुल फॉर्म बहुत बड़ा है तो उसको अभी साइड में रख देते हैं, हम लोग बात करते हैं बेसिकली कि इस बार मानसून स्ट्रांग नहीं है, कल चांसेस है बारिश के 60%, बट होगी कितनी ये वक्त बताएगा। और अब बताया जा रहा है कि आने वाले 5 दिन आप लोगों को मानसून का फील देने वाला है। भले ही आज टेम्परेचर 33°C रहा था, अभी भी 32° के आसपास टेम्परेचर है, बट इट फील्स लाइक 40 to 42°C, इतनी ही उमस हो रही है बाहर। तो इन सबसे बचिए आप लोग, स्टे हाइड्रेटेड, कीप हाइड्रेटेड, और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए ये गाना डिवाइन पाजी की आवाज में रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: चाली बार के नड़ा.

आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आजकल जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हमारा एक दोस्त आता है हमारे कान के पास आके बहुत प्यार से कुछ कुछ बोल के चले जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मच्छरों की। बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, एंड रात को सोने नहीं देते, दिन में काट जाते हैं। तो ये डेंगू और मलेरिया वाले मच्छर वापस आ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। एंड ये जो मच्छर है ना, इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि क्या ही बताएं। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, जो मैं इतने दिनों से आप सभी से दरख्वास्त कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर मैं बोलूँ, तो वो ये है कि अपने घर के आसपास प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं पर पानी तो नहीं जमा हो रखा। अपने घर की छत पर जाइएगा, वहाँ पर अगर कोई पुराना टायर पड़ा है, बाई चांस अगर कोई पुराना टायर पड़ा है, तो उसमें चेक कीजिएगा कि क्या उसमें पानी तो नहीं भरा हुआ। और काफ़ी बार होता है ना कि नज़रबट्टू के तौर पर कोई छोटा टायर घर के सामने लटका देते हैं, काफ़ी सारे लोगों के घर में आपने देखा होगा। तो ट्राई कीजिए, उस टायर के अंदर भी चेक कीजिए कि उसमें तो नहीं पानी जमा हो रखा, और अगर पानी जमा हो रखा है उसको तुरंत वहाँ से निकाल दीजिए। कूलर भी आप लोग लगातार साफ करते रहिए। बेसिकली मच्छरों को अंडे मत देने दीजिए, और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड एक और बात बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि फुल बाजू वाले कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए। गर्मी की वजह से नहीं, सर्दी की वजह से नहीं, मगर मच्छरों से बचाव के लिए ये सब करना पड़ेगा। सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि डेली केसेस आ रहे हैं, और अगर प्राइवेट आंकड़े देखें तो वो थोड़े से नंबर एक दो बढ़ जाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि स्टे सेफ, स्टे हाइड्रेटेड, एंड इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए। अभी टेंशन वेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन इस गाने का नाम है। दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में चला रहा हूँ आप लोगों के लिए टेंशन, जो कि

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इरशाद।
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आज

क्या आपको लगता है कि इंडियन वर्क कल्चर टॉक्सिक है? क्या आपको लगता है कि आपके ऑफिस में जो भी लोग बैठे हैं वो लोग टॉक्सिक हैं? स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड हम सभी कहीं ना कहीं काम करने चाहते हैं। हो सकता है आपका अपना बिजनेस हो, बट बिजनेस में भी ऐसा होता है कि हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, ये हो सकता है वो हमारे पार्टनर्स हों, हो सकता है वो हमारे एम्प्लॉयज़ हों, हो सकता है वो लोग भी टॉक्सिक हों। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ हमारे इंडियन वर्क कल्चर के बारे में। देखो, यहाँ ना दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लीडर और एक होता है फॉलोअर, और एक होता है लीडर और दूसरा होता है बॉस, हुक्म का इक्का बॉस। बॉस हुक्म का इक्का नहीं, बॉस वो होता है जो सिर्फ अपनी ही चलाना जानता है। वो बोलता है मैंने ये बोल दिया तो ये चीज़ होनी ही चाहिए, मगर जो लीडर होता है ना वो सबको साथ में लेके चलता है। वो बोलता है कि हम मिलकर इस काम को पूरा कर देंगे। तो आप लोग बताइए कि आपके जो सीनियर है ऑफिस में, अपने आपको बताइए ये बात, क्योंकि इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूं मैं। तो आपके जो सीनियर है आपके ऑफिस में, क्या वो सबको मिलकर एक साथ लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, या फिर बोलते हैं कि तुम ये काम कर दो, तुम वो काम कर दो, और सबको काम देके खुद से आराम से बैठ जाते हैं? और इंडियन वर्क कल्चर की अगर बात करें तो हर ऑफिस में एक इंसान तो ऐसा ज़रूर होता है जो इंसान सिर्फ और सिर्फ काम करने का नाटक करता है, जो दिखाता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बट आपको बताऊँ असली प्रमोशन उसका ही होता है। चक्रम कहते हैं इनको। हमने भी सुनी होगी वो वीडियो, आपने भी देखी होगी वो वीडियो, जब हमारी जो पूर्व मंत्री थी स्मृति ईरानी जी, उन्होंने बताया था कि हर ऑफिस में एक चक्रम ज़रूर होता है जो काम करने का नाटक बहुत करता है, और असलियत में प्रमोशन उन्हीं का होता है। असलियत में प्रमोशन उनका इसलिए होता है क्योंकि वो दिखाते हैं कि हाँ हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, असलियत में उन्होंने कुछ नहीं किया होता। और ऑफिस में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काम बहुत करते हैं मगर दिखाते कुछ नहीं है। तो आप लोग कौन से वाले हैं, सोचिए इसके बारे में। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, वापस आकर करते हैं इंडियन वर्क कल्चर के बारे में और भी बात।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इशान,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ। जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो, इस गर्मी ने कर दिया है सबका बुरा हाल।
0: बाबा,
1: अब बॉस के लिए पीपीटी के साथ लस्सी भी बनाता हूँ।
0: जैसी तेरी टूटी फटी शायरी है ना, वैसी तेरी लस्सी भी होगी। अपने घर से

0: हर जबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

एक NRI लेडी का ना वीडियो वायरल हो रहा है और वो कह रही है कि इंडिया के वर्क कल्चर में, वर्क प्लेस में 6 चीजें तो कॉमन है। क्या है वो चीजें, बताता हूँ, रुको जरा सबर करो। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। रिहाई ये गाना था पैराडॉक्स की आवाज में, और जो मैं ये भी बात बोल रहा हूँ, ये लेडी ने वीडियो बनाई है, NRI है, वो कह रही है इंडियन ऑफिस में वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर आप किसी इफेक्टिव पोजीशन पे नहीं हो ना, एक अच्छी पोजीशन पे नहीं हो, तो अगर कोई मीटिंग है तो वो कभी भी कैंसिल हो सकती है। अगर आप जूनियर हो तो वो मीटिंग कभी भी कैंसिल हो जाएगी, आपके टाइम को तवज्जो नहीं दी जाएगी। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपको कई घंटों तक इंतज़ार करना पड़ सकता है अगर आप एक अच्छी पोस्ट पर नहीं हो तो। और दूसरी चीज़ आती है चापलूसी। चापलूसी तो आम बात है, सबके ऑफिस में होती है, कोई ना कोई ऐसा होता है जो मैनेजर का फेवरेट होता है, कोई ना कोई ऐसा होता है जो बहुत ही ज़्यादा बॉस के पीछे पीछे पीछे पीछे चलता रहता है। और काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि ऐसे इंसान को ढूंढा जाता है ऑफिस में जो हर काम के लिए हाँ बोल दे। मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग भी किसी काम के लिए मना नहीं कर पाते, बट हमें पता है कि हाँ हम वो काम नहीं कर पाएंगे। तो जो मैनेजर्स होते हैं, जो हायरर्स होते हैं, वो लोग यही सोचते हैं कि ऐसे लोगों को ढूंढो जो हर काम के लिए हाँ बोल दे, और अगर काम धीरे धीरे करते हैं तो उसको टाल दिया जाता है, हमेशा ऐसे ही किया जाता है। ये इंडियन वर्क कल्चर की बातें हो रही हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई जो ज़रूरी बात नहीं होती ना, वो कोई नोट ही नहीं करता। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई ज़रूरी बात हो तो उसको तो नज़रअंदाज कर देते हैं हमारे सीनियर्स। और फीडबैक तो कोई भी स्वीकार करता ही नहीं है इंडिया में, मानते हो कि नहीं। तो ये वीडियो वायरल होने के बाद मैंने सोचा क्यों ना ये बातें फरीदाबाद की पब्लिक से शेयर की जाए, क्या वो भी सहमत है इन बातों से। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, केके की आवाज में गाना चला रहा हूँ, वापस आकर और भी ढेरों बातें करनी है रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
4: My like it, awesome. East Punjab.

0: पंजाबी पॉप कल्चर।
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

महीने की आखिरी तारीख, और महीने की आखिरी तारीख के साथ साथ आखिरी तारीख है आज आईटीआर फाइल करने की। लेट करोगे तो फीस लगेगी, लेट पेमेंट फीस। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। अब देखो, अगर आपने आईटीआर फिल कर दी अच्छी बात है, नहीं करी तो कर दीजिए फटाफट, रात के 12 बजे तक का आपके पास टाइम है। एंड काफी सारे लोगों का ना सवाल होता है, मुझसे मेरा ही एक दोस्त पूछ रहा था कि भाई इतना इनकम टैक्स भरने के बाद भी हमें सड़कें सही नहीं मिलती। मैंने कहा मिलती है, बिल्कुल मिलती है। हाँ, बट ऐसा होता है कि बारिश के बाद किसी किसी सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं, और ये हम सब लोग जानते हैं कि हमारे घरों के आसपास कोई ना कोई सड़क ऐसी ज़रूर है जहाँ पर पिछले 10 सालों से भी वो सड़क बनी नहीं है, फिर बन भी गई तो फिर से तुरंत वो उखड़ गई। तो आप लोगों के घर के आसपास भी ऐसी सड़क ज़रूर होगी, मेरे घर के आसपास भी है नो डाउट। बट इसके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं, हमें बस अपनी आवाज़ उठानी है, हमें सिर्फ रीच आउट करना है अपने लोकल लीडर तक और उन तक अपनी आवाज़ उठानी है कि सर प्लीज़ आप इस चीज़ के ऊपर संज्ञान लीजिए। क्योंकि देखो, फरीदाबाद में गड्ढे नहीं है ऐसा कहना गलत हो जाएगा। आप लोग सही चीज़ को सराहिए और सही चीज़ की सराहना कीजिए, और जो गलत हो रहा है उसके लिए भी आवाज़ उठाइए, मगर एक शांतिपूर्ण तरीके से। मतलब अपनी आवाज़ ऐसे उठाइए कि आप एक इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं कि सर प्लीज़ इसके लिए संज्ञान लीजिए और फटाफट इस कार्य को पूरा करवाइए। बस इतना सा कर सकते हैं ना हम लोग, मिलके एक साथ एक अच्छी कम्युनिटी बना सकते हैं, अच्छा सा साफ सुथरा फरीदाबाद बना सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। आप सभी के लिए MC स्क्वायर की आवाज़ में गाना चला रहा हूँ लाडो। ये लड़का भी फरीदाबाद का है, देखो कंप्लेंट नहीं करी इसने, जो भी इसके पास साधन थे उससे इसने बेहतरीन बेहतरीन और बेहतरीन करता चला गया, और आज इसका गाना हम लोग सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना।

मिलना है तो थोड़ी दूरी छोड़ दूं क्या, कुछ इश्क जता दिया है शाही से, थोड़ा सा इश्क जरूरी छोड़ दूं क्या।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

नई नई मूवीज आ रखी है थिएटर्स में, और सबसे ज्यादा अभी क्रेज बना हुआ है स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन और तू ने चुराए मेरे दिल का चन गाना कम्प्लीट कर लेते ना पहले। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। अगर मैं आप लोगों को आज एक सजेशन दूं, देखो फ्राइडे है और फ्राइडे को ना एक सजेशन देता हूं मैं आप लोगों को, इस फ्री की एडवाइस ले लो। आप लोगों के पास सैटरडे संडे अगर छुट्टी है तो ना बिंज वॉच करो एक मेरे कहने पे, अगर आपको कॉमेडी पसंद है तो आदर्श ग्राम विद्यालय। भाई ये इतना अमेजिंग बनाया ना, जो भी राइटर है हैट्स ऑफ है, सैल्यूट है उस बंदे को। एक गांव तो नहीं बोलूँगा, एक शहर के अंदर, एक कॉलोनी के अंदर एक छोटा सा सरकारी विद्यालय जिसके अंदर बच्चे पढ़ते हैं और उसमें टीचर्स भी हैं, और क्या हाल है उस सरकारी विद्यालय का, ये सब दिखाया गया है इस पूरे के पूरे सीरीज़ में। और 8 एपिसोड है टोटल, मैंने 5 देख लिए थे, 3 अभी बचे, 3 आज जाके ख़त्म कर दूंगा। अब मैं पहले से ही सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 5 इतने इंटरेस्टिंग थे ना कि मैं उठ नहीं पाया उन 5 को ख़त्म करने से पहले। ऑल दो मैं 8 के 8 देख लेता, बट कुछ काम ऐसे थे जो करने थे तो मैंने सोचा चलो इन कामों को कर लेते फिर देख लेंगे। बट मेरी सजेशन है इस मूवी को देखने के लिए, मूवी भी नहीं बोलूँगा सीरीज़ बोलूँगा, आदर्श ग्राम विद्यालय Amazon Prime पे आप लोगों को बहुत इजीली मिल जाएगी। OTT का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो अपने दोस्त से मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर वीकेंड अच्छा हंसते खेलते हुए बिताना है तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। और दूसरी है मुसाफिर कैफ़े, उसको भी आप लोग देख सकते हैं अगर आपको ड्रामा पसंद है तो, और इसके ऊपर भी रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी देखूँ ये मूवीज़ को, ये सीरीज़ को, बट अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मतलब वक्त है गाना चलाने का, तो गाना चला रहा हूँ आप लोगों के लिए। ला रहे हैं इस गाने का नाम मनिंदर भुट्टर की आवाज़ में, सुनिए इस गाने को। वापस आकर बात करते हैं रामायण मूवी के ट्रेलर की, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ थी जो शायद बहुत लोगों ने मिस

0: पता नहीं, मैं तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

कल यानी कि 30 तारीख को रामायण मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ था और सब लोग एक्साइटेड थे। जितनों ने भी देखा 90% लोगों ने सराहना करी, 90% लोग कह रहे हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा ट्रेलर है और टीजर के बाद बहुत सारी चीजें चेंज भी करी गई है। बट 10% लोग अभी भी है, मेरे ऑफिस में भी हैं, मेरे कलीग्स भी हैं जो कह रहे हैं नहीं यार मजा नहीं आया, बहुत ज्यादा वीएफएक्स डाल दिया। यार वो तो डालना ही था ना, क्योंकि कुछ क्रिएचर्स ऐसे हैं रामायण के अंदर अगर हम लोग बात करें तो उनको वीएफएक्स के थ्रू ही दिखा सकते हैं। तो चलिए ये जब मूवी आ जाएगी तब इसके बारे में और बात करेंगे। बट ये जो ट्रेलर है 4 मिनट 9 सेकंड का, इसमें कुछ लोगों ने कुछ कुछ डिटेल्स तो ज़रूर मिस करी होगी। क्या आप लोगों ने अरुण गोविल जी को देखा? हाँ, वही जो रामायण जो हमारे 90s में रामानंद सागर जी ने बनाई थी, तो उसमें श्री राम का किरदार जिन्होंने निभाया था अरुण गोविल जी, वो भी है इस फिल्म में एज दशरथ। और एक और चीज़ जो हम लोगों ने मिस करी वो है विवेक ओबरॉय। विवेक ओबरॉय विद्युत जीव के नाम से इस कैरेक्टर निभा रहे हैं। और एक और चीज़, रामायण मूवी में इस बार डबल कैरेक्टर में दिखाई दे रहे हैं। कौन? रणबीर कपूर। रणबीर कपूर डबल कैरेक्टर में कैसे दिखाई दे रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो शिव धनुष टूटा, शिव धनुष किसका था सबको पता है, भगवान परशुराम जी का। तो भगवान परशुराम जी का भी रोल है छोटा सा, तो वो भी निभा रहे हैं वन एंड ओनली रणबीर कपूर। तो रणबीर कपूर हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं और देखो नो डाउट ट्रेलर बहुत अच्छा था और ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ओवर शैडो कर दिया यश ने। यश मीन्स सुपरस्टार यश, साउथ इंडियन सुपरस्टार, जिन्होंने KGF में जिनको आप लोगों ने देखा था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ओवर शैडो कर दिया सब बाकी कैरेक्टर्स को, क्योंकि रावण का किरदार उनके ऊपर बिल्कुल जम रहा है। तो चलिए अब जब मूवी आएगी दिवाली में तब देखा जाएगा कि कैसी है मूवी और क्या होगा उसमें। मगर उससे पहले मैं ब्रह्मास्त्र की बात करूंगा क्योंकि उसका सेकंड पार्ट आ ही नहीं रहा है, वेट करते रह गए हम लोग। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर उसी मूवी का गाना सुनिए, केसरिया। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

आदित्य रिखाड़ी की आवाज में था ये गाना, और इसी गाने के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड अभी मैं एक बात बोलना चाहता हूं, वो ये कि सावन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुके हैं और कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। मैंने देखे कुछ कांवड़ जो पैदल जा रहे थे, मैंने देखे कुछ कांवड़ जो बाइक से जा रहे थे जल लेने के लिए, अब कुछ कांवड़ जो है वो डाक कांवड़ लेने जाएंगे, यानी कि ट्रकों में जाएंगे मगर भागते हुए वापस आते हैं, वो नॉन स्टॉप आते हैं। तो इन लोगों के लिए एक अलग से मार्ग निर्धारित किया गया है। और मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर अपनी सेवा देना चाहते हैं कांवड़ यात्रा में, देखो बहुत सारे लोग सेवा देते हैं, बहुत सारे लोग टेंट लगाते हैं, उन लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं, तो आप लोग भी ये सब कर सकते हैं। अब मैं कांवड़ यात्रा की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम जो हमारा ट्रैफिक है, ट्रैफिक पुलिस जो है, बेसिकली ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, वो एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। एक्चुअली वो लोग बहुत ज़्यादा दिन रात एक कर देते हैं, क्योंकि ये 10 दिन की 11 दिन की कांवड़ यात्रा 11 अगस्त को जल चढ़ेगा, और उस दिन तक ये लोग बहुत ही ज़्यादा मुस्तैदी से खड़े रहेंगे। तो उन लोगों के लिए हैट्स ऑफ है, सबसे पहले आप लोगों को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी सारे ट्रैफिक पुलिस वालों की, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाएंगे, वो पूरा यातायात को संभालेंगे, क्योंकि काफ़ी सारा ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ता है इस दौरान। तो इसके बारे में ज़रा आप लोग भी सोचिए, और अगर आपको रास्ते में कोई भी कांवड़िया दिखता है तो पहले तो अगर आपके मन में श्रद्धा है आप उनसे पूछ सकते हैं, अगर उनको कुछ चाहिए नहीं, अगर कुछ करना है तो आप लोग उनको रास्ता ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए एक गाना, तुम मिले दिल खिले, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: आज उसमें भी जहर गुला महसूस होता है,
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

सताता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

जस्ट इमेजिन कि आप लोग अपने घर से निकले हो, बहुत तेज बारिश हो रही है और अचानक से आपकी गाड़ी खराब हो जाए। नहीं नहीं, ऐसी चीजें इमेजिन करने में भी कितना बुरा लगता है ना। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। रिचा जी का मैसेज आया है मेरे पास और वो यही कह रही हैं कि आज सुबह सुबह गाड़ी से निकली थी एंड जाम लगा और साथ ही साथ गाड़ी भी बंद हो गई। एंड उनकी गाड़ी क्यों बंद हुई इनको कोई रीज़न पता नहीं चला, बट कह रही हैं सुबह से दिन ख़राब था। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि आपका दिन ख़राब हुआ, बट मैंने कोशिश करी कि अपनी तरफ से जितना हो सके उतना अच्छा दिन आपका बनाऊं और मैंने खूब सारे गाने भी चलाए। मगर अभी आप लोगों का दिन और भी बेहतरीन बनाने के लिए आने वाली है गीत विदेश कुबाजिया, खूब सारी प्यार भरी बातें लेकर एंड प्यार भरे गाने लेकर एंड प्यार भरी स्टोरीज लेकर आ रही है गीत। तो सुनना मत भूलिएगा इश्कबाजिया विद आरजे गीत रेडियो महारानी 89.6 पर। एंड इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आप सभी से अब कब, फ्राइडे है ब्रो, तो अब मिलेंगे सीधे सीधे मंडे की शाम। और मंडे की शाम कुछ खास होने वाली है, क्या खास है, क्या सरप्राइज आप लोगों के लिए रखा हुआ है वो तो मंडे को आपको पता चल ही ना जाएगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 एफएम विद दिस सॉन्ग गुरु रंधावा की आवाज में अजूल और सिरा मिक्स मैशअप ओनली ऑन 89.6 एफएम। कुछ हटके।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

इसी गाने के साथ स्वागत है, शो लेकर आ गई हूँ इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। आप जल्दी से आ जाइए मेरे साथ ताकि बहुत सारी बातें आप तक पहुँचा पाऊँ। और आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ है फराज। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए ना, फराज के नगमे यहाँ पर मैं कुछ छेड़ने वाली हूँ, कुछ उनकी बातें जो वो कह गए, उनकी बातें दिल से निकली और लोगों के दिल तक सीधा पहुंच गई। ऐसी ही बातें मैं आपके दिल तक पहुंचाऊंगी। और फराज की बात हो रही है और उनकी वो बहुत ही खूबसूरत सी शायरी मैं आप तक ना पहुंचा पाऊं कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। और बहुत ही गहरी बात कह दी है फराज ने इस शायरी के थ्रू। वो कहना चाहते हैं कि अक्सर हम जिन अच्छे लोगों को सोचकर उनके पीछे भागते हैं और सोचते हैं कि यार ये इंसान बहुत खूबसूरत है, जैसा बाहर से दिखता है तो शायद अंदर से भी वैसा होगा। लेकिन यहाँ फराज कहना चाहते हैं कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। हो सकता है कि जो खजाने आप ढूंढना चाहते हैं, जो किसी इंसान की इंसानियत आप ढूंढना चाहते हैं, वो आपको खराबों में मिल जाए। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप ढूंढ किसे रहे हैं। फराज की बातें चल रही हैं और फिलहाल वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत। फराज के बारे में बातें चल रही हैं, उनकी खूबसूरत शायरी जो मुझे लगता है हम लोग आए दिन सुन ही लेते हैं, और आजकल तो इंस्टाग्राम पर शायरी का जो एल्गोरिथम आया है ना वो बहुत खास है। चलिए कम से कम हम वो पुरानी शायरियों से तो रूबरू हो रहे हैं। तो इसी बात पर ना मुझे फराज की एक बहुत ही खूबसूरत सी शायरी याद आई है कि जहाँ के शोर से घबरा गई क्या, तुम अपने घर को वापस आ गई क्या, यहाँ कुछ आशना सी बस्तियां थी, जंजीरों को समंदर खा गए क्या, ना थी इतनी कजा ताजा मुसाफत, पुराने हम सफर याद आ गए क्या, मेरी गर्दन में बाहें डाल दी हैं, तुम अपने आप से उकता गए क्या। यानी कि फराज इस शायरी में कहना चाहते हैं जो इंसानियत, शायद ये हमारे जितने भी शायर थे और जितने भी कवि थे ना, इनको पहले से ही पता था कि आगे क्या होने वाला है, और ये शायरी में यही कहना चाहते हैं कि इंसानियत कैसे गायब हो जाएगी इंसानों से, कि यहाँ कुछ आशना सी बस्तियां थी, जंजीरों को समंदर खा गए क्या। और ऐसी ही बातें जारी रहेंगी, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत, अगला गाना है फिल्म स्ट्रीट 2 से।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो है इश्कबाजियां। मैं हूं इश्क वाली गीत, और फराज की बातें चल रही हैं, फराज की बातें चल रही हैं, और फराज की वो शायरी मुझे याद आ रही है यहाँ पर, स्पेशली इस फिल्म के टाइटल को टच करती हुई वो शायरी है। जब कोई इंसान आपको बहुत टाइम बाद मिलता है ना, और वो ऐसी सिचुएशन होती है जब आप उस इंसान को अपना नहीं पाते हैं, और अक्सर आपके दिल में ये बात रह रह कर आती है कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, क्योंकि तू बहुत देर से मिला है मुझे, तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का भी हौसला है मुझे, दिल धड़कता नहीं टपकता है, कल जो ख्वाहिश थी आबला है मुझे, हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। और फराज ने इस बात के थ्रू ना उन हजारों लोगों को एक कड़ा तंज कसा है, जो बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि उनकी जिंदगी ना मेला है, बस उन्हें लोग ही लोग चाहिए। और यहाँ वो कहना चाहते हैं कि हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, उन्हें सिर्फ एक हम सफर चाहिए, पूरा एक मेला नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे, एक मुसाफिर जो है, एक जो इंसान है, वही मेरे लिए जिंदगी भर के लिए काफी है। तो फराज की खूबसूरत बातें चल रही है, फिलहाल वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है इश्कबाजियां।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: क्या आपको पता है कि फेसबुक पे आपके रिलेटिव से ज्यादा खतरनाक सिर्फ एक ही चीज है और वो है हैकर्स। तो उनसे प्रोटेक्शन चाहिए तो कुछ मेजर्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहले बात करते हैं पासवर्ड की। लेट मी गेस, आपका पासवर्ड क्या ही होगा? पासवर्ड 123 या फिर 12345? अरे भाई, तुम्हारा पासवर्ड इतना वीक है कि मेरी नानी भी गेस कर ले। तो सबसे पहले अपना पासवर्ड ऐसा बनाओ जैसे अपने क्रश को प्रपोजल लेटर लिख रहे हो, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और अनप्रिडिक्टेबल। याद रखो दोस्तों, सेफ रहो, स्मार्ट बनो और फेसबुक पे बॉस रहो।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत और बातें चल रही हैं फराज की। और फराज की एक शायरी अभी मैं पढ़ रही थी और मुझे ना इस शायरी से वो बात याद आई कि जब दो लोग साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे के लिए बदल जाते हैं, होता है ना अक्सर हमारी जिंदगी में ये बात, मुझे लगता है हर किसी के साथ हो ही जाती है, जब वो जमाने के लिए नहीं बदलते एक दूसरे के लिए बदल जाते हैं और एक दूसरे से नजरें मिलाते नहीं हैं, नजरें बचाते हैं। इसी बात पर लिखा है फराज ने कि दुख छुपाए हुए हैं हम दोनों, जख्म खाए हुए हैं हम दोनों, तो कभी चांदनी थी और धूप था मैं, अब तो साए हुए हैं हम दोनों, जैसे एक दूसरे से शर्मिंदा सर झुकाए हुए हैं हम दोनों, जैसे एक दूसरे की चाहत को अब भुलाए हुए हैं हम दोनों। इश्क कैसा कहां का अहद फराज, घर बसाए हुए हैं हम दोनों। जब दो लोग एक दूसरे से ही अजनबी हो जाते हैं, इस पर फराज ने बहुत ही खूबसूरत सी शायरी लिखी है। ऐसी ही कुछ बातें और मैं आपको बताने वाली हूं, लेकिन अभी वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

विशाल मिश्रा की खूबसूरत आवाज में ये गाना है और देखिए गाने का टाइटल भी खूबसूरत है और फराज की जो ये अगली शायरी है ये भी खूबसूरत है क्योंकि इन्होंने खूबसूरत किसी शख्सियत के लिए लिखा है जिनसे शायद या तो ये प्यार करते थे या किसी के लिए भी इन्होंने लिखी है कि सुना है लोग उसे आंखें भर के देखते हैं सो कुछ दिन उसके शहर में ठहर के देखते हैं, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं, सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे उसे फलक से उतर के देखते हैं, सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को उसे जुगनू ठहर के देखते हैं, सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं सो हम बहार पे इल्जाम धर के देखते हैं, सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कुतर के देखते हैं, रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं। सोचिए जब फराज ने इतना खूबसूरत लिख दिया है तो वो शख्स कितना खूबसूरत होगा। और फिलहाल वक्त है यहाँ पर ऐसे ही खूबसूरत से गाने का, गाना है अगला शोर इन द सिटी से साइबो गाना है और इसके बाद मैं रेट्रो इश्क लेकर आ रही हूँ, कहीं जाइएगा मत, इंतजार कीजिए और फिलहाल गाना सुनिए।

फिल्म चलती का नाम गाड़ी से और गाना है किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत आवाज में। और इसी गाने के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ शो इश्क बाजिया में, हूँ इश्क वाली गीत। और अब समय है रेट्रो इश्क का, जहाँ मैं लेकर आई हूँ आज एक और ही बहुत ही खूबसूरत सी प्रेम कहानी, उस जमाने की प्रेम कहानी। बॉलीवुड में तमाम प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनको उनके रिश्ते की मुकम्मल मंजिल मिल गई, वहीं कुछ प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनकी दास्तान अधूरी रह गई, जिनका अंत बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो जो मेमोरीज क्रिएट हुई ना वो बहुत अच्छी थी। तो इन्हीं यादों को आप तक पहुंचाती हूँ रेट्रो इश्क के जरिए। और आज एक ऐसी ही लव स्टोरी लेकर आई हूँ कि जिन्हें प्यार हुआ, इकरार हुआ और मंजिल भी नहीं मिली। ये बहुत ही खास सी लव स्टोरी है जिससे आज आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन अभी वक्त गाने का है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

आरडी बर्मन साहब का म्यूजिक, लता जी और किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। देखिए, जब किसी की याद आती है और ये पुराने गाने जब हम सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो इतनी सारी यादें इकट्ठी हो जाती हैं, इतने सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे होते हैं। और ये क्या जमाना था ना, जहां प्यार इशारों में हुआ करता, अगर किसी से इश्क हो तो वो आंखों से ही पता चल जाता, अगर किसी से कोई बात कहनी हो तो वो इशारों में ही हो जाती। और हाँ, जहां किसी को दिल की बात कहने में, इजहार इश्क करने में बहुत वक्त लगता, पहले उसे समझा जाता, फिर खतों के जरिए उस तक अपनी बात पहुंचाई जाती, और फिर ये भी देखा जाता कि हाँ, क्या उसे भी उतना ही इश्क है। क्या खूबसूरत सा जमाना था ना ये, जहां किशोरदा के, रफी साहब के, लता जी की आवाज में बहुत खूबसूरत से गाने होते और किसी को ये गाने डेडिकेट भी किए जाते। उसी रेट्रो वाले जमाने की, उसी रेट्रो इश्क की बातें होंगी यहाँ पर। अभी वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

कुछ अनसुनी कहानियाँ मिलती हैं गलियों से, कुछ जज्बात भरी अनोखी निकलती हैं दिल से। फरीदाबाद की गलियों में सिर्फ रास्ते नहीं, कहानियाँ भी बसी हैं। कहीं एक पुरानी हवेली अपनी कहानी सुनाने को बेकरार है। तो कहीं एक नया स्टार्टअप का सपना पंख फैला रहा है। हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखी जा रही है और हम लेकर आए हैं वही कहानियाँ जो इन गलियों से निकलती हैं और सीधा आपके दिल तक पहुँचती हैं। तो सुनिए फरीदाबाद की गलियों से, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: शुरू हो जाओ।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे दे।
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: तुम्हारी हरकतें जानता होगा।
1: अबे पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोया हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: अब तू बोलता रहे भाई, हम

कुछ वादे सच्चे होते हैं, लेकिन ये वादे ताउम्र निभाए जाएं ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसे मंजूर नहीं होती हैं, और ये रिश्ते, ये जो मोहब्बत होती है, ये अक्सर अधूरी रह जाती है। गाना है फिल्म हम किसी से कम नहीं, और गाना है पूर्णिमा और रफी साहब की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और रेट्रो इश्क में आज बातें होने वाली है एक उस जमाने की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। और जैसे कहते भी हैं कि जो सच्ची मोहब्बत होती है वो अक्सर अधूरी रह जाती है, और ये अधूरी मोहब्बत थी राज कपूर साहब और नरगिस की। वैसे दोनों की रियल लाइफ में तो बहुत ही अच्छी जोड़ी थी, बहुत ही सुपर हिट जोड़ी थी। इवन लोगों को ये जोड़ी इतनी ज्यादा पसंद आई कि लोगों ने बैक टू बैक फरमाइशें की इस जोड़ी को ऑन स्क्रीन देखने की। असल जिंदगी में भी उतनी ही जोड़ी ये एक दूसरे के लिए परफेक्ट थी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों कभी साथ नहीं रह पाए। इनकी स्टोरी भी ना बिल्कुल फिल्मी स्टोरी जैसी है, इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली की।

0: सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
1: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर के अंदर है पर इंसानियत हर जगह होनी चाहिए।
2: रेडियो महारानी 89.6 एफएम कहता है, गर्मी से लड़े या ना लड़े, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।

जीरो इश्क बातें चल रही हैं राज कपूर साहब और नरगिस की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। एक ऐसा इश्क जो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उस इश्क में एक अलग सी बात थी। ये इश्क बेपनाह था। वैसे हिंदी सिनेमा में कई प्रेम कहानियां बहुत फेमस हुई जिनके आज भी चर्चे होते हैं। उन्हीं में से ये जोड़ी थी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त की। इनकी दास्तान बहुत ही खूबसूरत है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर भी प्यार से ये दिल भला क्यों डरा। ये गाना दोनों पर एकदम फिट बैठता है। दोनों के बीच बेपनाह प्यार था, फिर भी ये दास्तान कभी पूरी नहीं हो पाई। राज कपूर और नरगिस की सुपरहिट जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी। रियल लाइफ में भी दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, पर किस्मत को दोनों का साथ मंजूर नहीं था। और इन दोनों की केमिस्ट्री तो वैसे फिल्मों में गानों में भी दिखाई देती थी। और जब इनकी पहली मुलाकात हुई, उस वक्त नरगिस हिंदी सिनेमा में काफी अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी थी। इन दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी बहुत अलग है और बहुत ही खास है। दरअसल राज कपूर मिलने गए थे नरगिस की माँ से, लेकिन दरवाजे पर सबसे पहले इनकी नजर जब पड़ती है नरगिस पर, तो ये उन्हें देखते रह जाते हैं और अपना दिल हार जाते हैं। और इसे कहते हैं पहली नजर की मोहब्बत, जहाँ ये इस कदर अपना चैन खो देते हैं कि ये दोस्ती कर लेते हैं नरगिस के साथ, और ये दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। तो इस तरह से इनकी पहली मुलाकात होती है। और इसके बाद दोनों ने काफी सारी फिल्में एक साथ की। बरसात के बारे में अगर बात करूं, 1949 में जो आई थी, उसके बाद प्यार, आवारा, आशियाना, पापी, श्री 420, चोरी चोरी, बहुत सारी फिल्मों में ये एक साथ नजर आए। और मैंने कहा ना, उस टाइम की बहुत डिमांडिंग जोड़ी थी ये। और आज इसी जोड़ी के बारे में बातें चल रही हैं। फिलहाल वक्त है गाने का। शो है इश्क बासियां, मैं हूँ इश्क वाली।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

गाना है फिल्म चुपके चुपके से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है रेट्रो इश्क, जहां बातें चल रही हैं रेट्रो की बहुत ही फेमस जोड़ी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में, जहां नरगिस से पहली नजर का प्यार हो जाता है राज कपूर साहब को और वो उनके प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो जाते हैं। राज कपूर साहब उस वक्त शादीशुदा थे, इतना ही नहीं उनके बच्चे भी थे और ये बात नरगिस को भी पता होती है, लेकिन इसके बावजूद वो भी प्यार कर बैठती हैं राज कपूर से और इसके बाद हर बार वो राज कपूर के साथ फिल्मों में आने लगती हैं और हर फिल्म उनकी हिट हो जाती है और दोनों ऐसे ही बैक टू बैक बॉलीवुड को बहुत हिट फिल्में दे रहे थे। उस दौरान इन दोनों को बॉलीवुड के क्लासिक कपल भी कहा जाता, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है और 9 साल के एक रिश्ते में रहे जहां नरगिस ने राज कपूर का इंतजार किया 9 साल, शादी भी करना चाहती थी लेकिन राज कपूर चाह कर भी उनके पास लौट कर ना आए और इस तरह से ये जो मोहब्बत थी ये इश्क की कहानी अधूरी रह गई। यहाँ बातें हुई राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में और फिलहाल वक्त है गाने का। शो इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना,
3: और अगर सफर को खूबसूरत है बनाना तो गाड़ी नियंत्रित स्पीड पर ही चलाना।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके
4: 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं इश्क बाजों की दिल दिया गल्ला।

गाना बहुत खूबसूरत है और गाना है फिल्म ऐ दिल है मुश्किल से। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। आपके दिलों की बातें जो हैं वो आप तक पहुंचानी है और आज एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आई हूँ दिल दियां गल्ला में। कहते हैं ना कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और दोस्ती होती भी है तो धीरे धीरे वो दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। और बहुत सारे लोग ना इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार क्या होता है ऐसा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती प्यार में बदल जाती है, जबकि दोनों के बीच एक बहुत ही थिन लाइन होती है। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी के साथ थोड़ा ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जब आपको उसकी हर बात से फर्क पड़ता है, चाहे दोस्ती क्यों ना हो, जब आप उससे अपने दिल की हर बात शेयर करते हैं और सेम सामने से भी वही फीलिंग है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स के जरिए ये दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। इसी के बारे में बातें होंगी, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, अगला गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से हमनवा।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
4: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
5: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
6: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना। रेडियो महारानी 89.6 FM सुन रहे हैं आप। शो है इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दिया कल्ला। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, मैसेज है मेघा का, और ये लिख रही है कि दोस्ती को प्यार में बदलने से कैसे रोका जा सकता है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना कि कुछ फीलिंग्स पर तो आपका कंट्रोल नहीं होता, वो हो जाती हैं और कई बार गो विद द फ्लो आपको भी हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं जरूर आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जनाब, वो दोस्ती ही क्या जिसमें प्यार ना हो, ऐसा तो लोग कहते हैं। पर प्यार तो वो हसीन एहसास है ना, जो हर रिश्ते में एक अलग सी बात ला देता है। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि प्यार मर्जी से नहीं होता, ये हो जाता है। आप मानेंगे नहीं, कई बार अगर आप दिल से एक्सेप्ट कर लेना कि सामने वाले से आपको प्यार नहीं होगा, तो यकीनन प्यार नहीं होगा। अगर आपने दिल से ही सोच लिया है कि आपके दिल में है कुछ उसके लिए, तो आप खुद को कैसे रोक पाएंगे। इसलिए अगर आप पहचानना चाहते हैं कि आपको किसी से प्यार है या नहीं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, आप ये देख सकते हैं कि आपको उसकी चिंता तो नहीं रहती। जैसे आप जब भी उसके बारे में सोचते हैं किसी बात को लेकर, तो आप परेशान हो जाते हैं, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम से आप परेशान होते हैं, और आप हर बार कोशिश करते हैं कि वो इंसान अच्छा फील करे, आप उसे सही रास्ते पर ले जा पाए, या आपको किसी की याद आती रहती है। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो मुबारक हो मेरे दोस्त, आप प्यार में हैं। और अब अगर आप प्यार में हैं तो ये पक्का है। पर प्यार जो है वो बहुत से रिश्तों में हो सकता है, जैसे कि दोस्ती का रिश्ता, जैसे कि मेघा का सवाल आया है कि कैसे बचा जाए। तो दिक्कत प्यार में नहीं है, प्यार को समझने में है। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे सिवा तुम्हें और कोई प्यार नहीं करता, तो सामने से ये रिप्लाई आता है कि आपको भी इसी तरह की सेम फीलिंग्स है। तो मेघा, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि दोस्ती में प्यार होता है, लेकिन दोस्ती में और प्यार में एक थिन लाइन होती है। दोस्ती में किसी की केयर होती है, किसी को आप समझते हैं, लेकिन हाँ, जब इमोशंस का बहुत जुड़ाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप प्यार की तरफ खिंच जाते हैं। तो आप अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं वाकई में इस प्यार से बचना। और अगर बचना नहीं चाहते तो गो विद द फ्लो। फिलहाल वक्त है गाने का, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

कि ऐसा आपने सोच लिया, और आप फिर ये भी सोचते हैं कि सामने वाले के मन में अगर ऐसी कोई चीज ना हो, ऐसी कोई फीलिंग ना हो, तो खामखा ही गलत फहमियां बढ़ेंगी और गलत कदम उठाकर आप उसकी दोस्ती को भी खो दोगे। इसीलिए आप शायद सोचते हैं कि आपको उसकी जिंदगी से अब दूर रहना है या उस इंसान से दूर चले जाना है, और इसमें होता ही है कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती कहीं खो जाती है, कहीं गायब हो जाती है। तो आपको खोना नहीं है, और आपको ये भी जानना है कि सामने वाले को भी उतना ही इश्क है या नहीं है, या क्या फीलिंग है। तो इसके बारे में बात करने वाली हूँ शो इश्क बाज़ी, या मैं हूँ इश्क वाली गीत, और गाना है अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

0: का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
1: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
0: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
1: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाए कुछ सरल उपाय।
3: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहे, बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचे।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
4: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो।
5: उम्र के साल कितने हैं, किन्हें लेके क्या करना,
4: क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।
5: उनके

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जांच।
1: ऑनलाइन दुनिया एक डिजिटल मेला है जहाँ हर चमक सोना नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं खुद। एक दिन मुझे ऑनलाइन दिख गए कोरियन बूट्स सिर्फ 500 रुपए में, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। मैंने सोचा क्या कमाल की डील है, तभी तुरंत ही ऑर्डर कर दिया। और फिर जो हुआ, मेरे घर आए सिर्फ 500 रुपए का चूना। बूथ तो कभी आए नहीं, बस मेरा दिल बोला अलेक्सा प्ले हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स। इसलिए ओटीपी पासवर्ड बैंक डिटेल्स किसी को मत दीजिएगा, और कोई डील ज्यादा ही परफेक्ट लगे तो समझ जाओ स्कैम का जादू चल रहा है। रमेश बाबू अलर्ट रहिए, सेफ रहिए, वरना ऑनलाइन बाजार आपको भी कोरियन बूथ का चूना लगा देगा।

गाना है फिल्म कभी हाँ कभी ना से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और यहाँ पर बातें चल रही हैं कि जब किसी से दोस्ती हो और वो प्यार में बदल जाए, और आपको ये डर रहे कि सामने वाले को अगर ये बात पता चलेगी तो वो जो खूबसूरत सी दोस्ती है वो भी कहीं ना कहीं खो जाएगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको टाइम बहुत कम स्पेंड करना है। अब आप ये सोचेंगे कि गीत ऐसी बात क्यों कह रही है, बल्कि टाइम तो ज्यादा गुजारना चाहिए तभी तो आप समझ पाएंगे। लेकिन नहीं, आपको उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सा समय अपने लिए बिताना है। ध्यान भटकाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल ना रहे, उनके मैसेजेस का और कॉल्स का जवाब देने में थोड़ा सा टाइम लगाए यार, ताकि आपको भी तो पता चले कि उनको इंटरेस्ट है आप में या नहीं। तो आपकी जो गैर मौजूदगी है वो उन्हें आपकी याद दिलाने वाली है, और उन्हें लगेगा कि आपको ऐसा क्या हो गया कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इस बारे में सोचेंगे। और कहते हैं ना, जो चीज हमसे दूर जाने लगती है हमें तभी उसका ख्याल आता है, और हो सकता है कि आपकी गैर मौजूदगी उन्हें आपके ना होने का एहसास दिला दे, और उन्हें एहसास दिला दे कि शायद आपने उनमें इंटरेस्ट नहीं लिया था, इसीलिए वो कहीं चले गए हैं, कहीं खो गए हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि उनको भी मोहब्बत है या नहीं, और यहाँ दोस्ती भी नहीं टूटेगी और आपको भी पता चल जाएगा। और देखिए, इतनी सारी बातें हो गई हैं सेगमेंट दिल दिया गल्ला में, अभी मेरे जाने का है समय। मैं मिलूंगी आपसे कल जहाँ ढेर सारी बातें होंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: कबीर ये हेलमेट दो।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: और झुमका
1: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
2: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी, सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: भी दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

सेव लाइफ, ऑफ कोर्स, पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। ओ करम खुदाया है, ओ करम।

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से,

खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ये भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ही इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

0: ਕੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ
1: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
2: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
3: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला।

0: गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर। डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रियाने भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
6: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
7: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
6: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
7: शायरी पे ध्यान लगाओ।
6: इरशाद,
7: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
6: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
7: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
6: ये बात तो सही है।
7: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
6: कैसे कैसे?
7: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
6: अरे यार, वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
7: सुनो सुनो,

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर रात बाकी बात बाकी में।
2: बहुत भोला न जाने किस पे आएगा।
3: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है,
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक,
1: चुप रहो आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।
2: उनके जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो ना लतीफा तुम्हें सुनाते हैं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम बेमिसाल, तुम लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जी।

0: है शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना सह तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: सादा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है।
1: क्या?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी और तुमसे?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं।
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: मोना।
0: सुनो तो सुनो तो
2: आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: तो काम भी बताइए।
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है।
1: जी देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। श्रीमद् भगवद गीता के 5 खास उपदेश, जिनका पालन करके आप अपने अमूल्य जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली सीख के साथ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वैसे तो भगवद गीता का हर अध्याय ज्ञान से भरा है, लेकिन गीता का 3रा अध्याय जिसे कर्म योग भी कहा जाता है, ये गीता का सबसे अनमोल अध्याय है। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि हर मनुष्य कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन काम करता रहता है। मनुष्य कभी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन अगर जीवन में तरक्की करनी है तो मनुष्य को निष्काम भावना के साथ अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल की कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, इसीलिए कर्म करते जाओ, फल की इच्छा को त्याग दो।

0: विचार शक्ति जितनी ऊंची होती है व्यक्ति उतने ही ऊंचे कार्य करता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वक्ता देवी चित्रलेखा जी के विचार।
1: छापत चरण मोहन लाल, धन धन राधिका के चरण, समग्र विश्व में लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती हैं। पर धन्य है वो ब्रज भूमि जहाँ मोहन बैठ करके दिन रात श्री किशोरी जी के चरण दबाते हैं, राधा रानी के चरण दबाते हैं। जब कृष्ण ब्रज की धरती को छोड़कर के मथुरा जा रहे थे, सारी गोपियां कृष्ण के रथ के सामने लेट जाती। हे कान्हा, आप और हम विचार करके देखें, अगर थोड़ी देर के लिए हमारी श्वास हमसे छीन ली जाए तो हमारी क्या दशा होगी, कैसे जी पाएंगे हम? यही दशा गोपियों की थी। कृष्ण से दूर मतलब प्राणों से दूर, सब सामने लेट गई। हे उद्धव, हे अक्रूर, तुझे रथ चलाना है तो हमारे ऊपर से निकाल के लेके जा। श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों को कि गोपी क्या बात करती हो तुम, दो दिन के लिए इतना ये सब क्या करने की आवश्यकता है, दो ही दिन की बात है, मैं वापस भी तो आने वाला हूं। पर जो प्रेमी दिल होता है, जो प्रेमी हृदय होता है, वो समझ जाता है कि हाँ ये कह तो रहे हैं कि वापस आएंगे, पर मन कह रहा है कि ये अंतिम बार है। गोपियों को लग रहा है जितना देख सकती है कृष्ण को देख ले, उसके बाद पता नहीं ये अवसर ये मौका आए।